FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, तदनुसार 14 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 और ठीक 27 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज के सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भोर की इस पावन बेला में भक्ति और संगीत के मधुर संगम के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें और भजनों की मधुर रसधारा में स्वयं को सराबोर करें।

ईश्वर का नाम वह अमृत है जो मन को निर्मल और जीवन को सार्थक बनाता है। भोर की पहली किरण और प्रभु का पहला स्मरण जीवन को मंगलमय बना देता है।

जब शब्द भक्ति में ढल जाते हैं तब वे भजन बनकर मन को शांति और आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। प्रस्तुति है ए हरिहरन की।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और स्वर दिया था ए हरिहरन ने। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का दिवस। आज है विक्रमी संवत 2083 के कृष्ण पक्ष के ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी, तदनुसार 14 जून 2026। तो श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, अब आपको बताते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अध्याय 6 के श्लोक 7 से 10 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा की।

शाम 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा भारत और पाकिस्तान T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का आंखों देखा हाल, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

कार्यक्रम बाल सभा आप सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 10 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम शक्ति मंच। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा का विषय रहेगा रक्तदान महादान। रक्तदान क्यों आवश्यक है, ऑर्गन डोनेशन और शरीर दान के समाज को क्या फायदे हैं।

0: कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 बजे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व रक्तदाता दिवस और पतंजलि योग सूत्र। कार्यक्रम बाजे नगाड़ा प्रसारित होगा सुबह 7:40 पर। सुबह 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम दिल पुकारे। तो श्रोताओं, ये तो था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यंतं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम का अगला गीत पेश है फिल्म चाहत से अलका याग्निक और विनोद कुमार राठौर की आवाज में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा पेश है फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। कलाकार हैं रामचंद्र वर्मा।
1: वादों भरम मेट सोने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाजे नगाड़ा FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसी

0: दिवसीय महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का

0: अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून की कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of

एक नई सुबह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और ढेर सारी खुशियां लेकर आ गई है। उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ हम सबको एक और खूबसूरत दिन जीने का अवसर मिला है। तो आइए इस खूबसूरत सी सुबह का स्वागत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। और दिन की शुरुआत हमेशा हमें करनी चाहिए सकारात्मक विचारों के साथ। जी हाँ, जब पॉजिटिव वाइब्स होंगी ना, तभी हमारा जो है पूरा दिन एक एनर्जी के साथ हम लोग व्यतीत कर पाएंगे। मैं हूँ निधि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, मैं निधि हूँ और आपके साथ 9:30 बजे तक यानी 9:30 तक रहूँगी आपके साथ। प्यारे प्यारे गीत होंगे और होंगी ढेर सारी बातें और उसके साथ कुछ टॉपिक्स होंगे जिन पर होगी चर्चा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले एक गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं।

जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है। तो चलिए आज का जो सवाल है फटाफट से आपसे पूछ लेते हैं। आज हम आपसे पूछ रहे हैं जो सवाल वो है, आपको आज बताना है, सबसे पहले सवाल पूछने से पहले आपको हम बता दें जो भी आप जवाब देंगे आज सबसे पहले आपको हिंदी में टाइप करके जवाब लिखना है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज जो आपको करना है वो आप हिंदी में लिखेंगे ताकि हम उनका जो प्रोनंसिएशन है, जो आपको आपके नामों का जो सही उच्चारण है वो ठीक से कर पाएं और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको भी नाम भेजने में और हमें भी उन नामों को उच्चारित करने में। तो चलिए आज आपको बताना है भारत में पहली ब्लड बैंक की स्थापना किस शहर में हुई, भारत में पहले ब्लड बैंक की स्थापना किस शहर में हुई थी, उस शहर का नाम लिखकर भेजना है आपको और 9466021336 पर टेक्स्ट मैसेज आपको करना है। तो चलिए जिन भी श्रोताओं ने अभी पहले ही उत्तर दे दिए हैं माफ कीजिए उनका नाम हम शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन 8:45 तक आपके पास समय है इस सवाल का सही जवाब देने के लिए। तो फटाफट से फोन उठाइए और टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए 9466021336 पर, आपको आज बताना है भारत में सबसे पहले ब्लड बैंक की स्थापना किस शहर में हुई थी, उस शहर का नाम लिखकर भेजिए हमें। चलिए इस गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आपको चर्चा जारी रखेंगे इसी विषय पर।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रक्त यानी खून, इसका कोई कृत्रिम विकल्प नहीं होता, कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। विज्ञान ने भले ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना है जो मानव रक्त का स्थान ले सके। जब भी कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आप लगा लीजिए थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, बीमारी से जूझ रहे बच्चे हैं, मरीज हैं, उनको नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है, तब एक रक्तदाता जो है वो किसी की लिए उसकी ज़िंदगी बचा सकता है, जीवनदाता बन जाता है। लोगों के मन में ये भी भ्रांतियां होती हैं दोस्तों कि हम अगर रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सच यही है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित होता है। रक्तदान करने के बाद शरीर कुछ ही समय के बाद वो रक्त की जो कमी है उसको पूरा कर लेता है, और डॉक्टर की देखरेख में किया गया रक्तदान न केवल सुरक्षित होता है बल्कि कई बार स्वास्थ्य जांच का भी अवसर प्रदान करता है। रक्तदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो मानवता की सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण है। अब वो कैसे है, देखिए, वो रक्तदान जो हम कर रहे हैं वो हम किसी की मदद के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए शायद उसको, जिसको हम जानते भी नहीं। हमारा एक छोटा सा प्रयास, एक बार किया गया रक्तदान भी किसी परिवार के खुशियां वापस ला सकता है। तो सोचिए जरा, अगर हम एक बार रक्तदान करते हैं तो हम किसी की जिंदगी बचा रहे होते हैं। अगर हम इसी सोच के साथ रक्तदान करें और स्वैच्छिक तौर पर रक्तदान करें, तो कहते हैं ना कि एक एक बूंद की कीमत उसको पता होती है जिसे उसकी ज़रूरत होती है। आज के समय में रक्त की इतनी आवश्यकता बढ़ गई है, अस्पतालों में, ब्लड बैंकों में भी हमेशा पर्याप्त मात्रा में रक्त की ज़रूरत रहती है। इसलिए हमें ज़रूरत यही है, आवश्यकता यही है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो नियमित रूप से और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएं, और संकल्प लें कि हम रक्तदान के महत्व को समझेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, रक्तदान जो है एक महादान है, एक एक बूंद किसी के जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, रक्तदान कोई और कर लेगा, अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि चलो यार हम नहीं तो कोई और तो कर ही लेगा, लेकिन सच्चाई ये है जब जरूरत पड़ती है तो हर यूनिट रक्त की कीमत समझ आती है हमें। अस्पतालों में रोजाना ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें रक्त की जरूरत है, दुर्घटना में शिकार लोग हो जाते हैं, जो दुर्घटना में पीड़ित लोग होते हैं, या बड़ी सर्जरी से गुजर रहे लोग होते हैं, उनको भी रक्त की नियमित रूप से आवश्यकता रहती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अगर एक बार रक्तदान करके देखेंगे तो हो सकता है आपका रक्त ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसे आपके रक्त की इतनी जरूरत है कि वो पता नहीं वो बचेगा या नहीं, और क्या पता आपके रक्त पहुंचने की बाद वो बच जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसका परिवार खुशियां मना पाए। एक रोचक बात यह है कि रक्तदान करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, सिर्फ कुछ मिनट, और उसका प्रभाव पूरे ज़िंदगी पर पड़ सकता है। इसीलिए इसे रक्तदान को हम महादान भी कहते हैं। तो चलिए अभी कार्यक्रम में आगे एक बढ़ते हैं गीत के साथ, और उसके बाद करेंगे आपसे और ढेर सारी बातें।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए।

तो चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं एक दूसरे चर्चा के विषय पर। आज का जो चर्चा का विषय है वो है पतंजलि योग सूत्र। जी हाँ, पतंजलि योग सूत्र भारतीय दर्शन और योग विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इसमें लगभग 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के सिद्धांत, अभ्यास और जीवन को संतुलित बनाए रखने के उपाय बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं माना, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का माध्यम बताया है। मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है, यही उसका प्रसिद्ध सूत्र है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, पतंजलि के ने योग के ये 8 अंग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। इन 8 चरणों के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। तो चलिए, आज पूरी दुनिया जब योग को अपना रही है, तो इसके पीछे महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। योग सूत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मनियंत्रण कितना आवश्यक है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम में जो हमने सवाल किया था उसके जवाब और उन श्रोताओं के नाम हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है, वो भी आपको जल्द ही बताएंगे इस गीत के बाद।

तो श्रोताओं, आज जो हमने आपसे सवाल किया था वो था, भारत में पहली ब्लड बैंक की स्थापना किस शहर में हुई थी? और इसका सही जवाब है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता में हुई थी सबसे पहले ब्लड बैंक की स्थापना। तो आज जिन श्रोताओं ने सही जवाब दिया है उन सभी के नाम हम आपको बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जवाब आया थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से अश्वनी कराडिया, कृतिका और सूबेदार अमरनाथ का। इसके बाद सही जवाब देने वाले श्रोता हैं तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह, सिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं ये। हमारे श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया हिमाचल प्रदेश से ही हैं योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। इसके साथ सही जवाब आया है अंबाला से, बराड़ा जिला से, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल का। सही जवाब दिया है हमें ललिता सिंह और भगवान सिंह ने, सिलाई हिमाचल प्रदेश से हैं ये भी। इसके साथ ही सही जवाब हमारे पास आया है दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप और विश्वदीप येले। इसके साथ श्रोता हैं हमारे जिन्होंने सही जवाब देकर भागीदारी बनाई है अपनी कार्यक्रम में, संजू देवी, ममता देवी, विनोद कुमार तोमर और ये हैं हमारे श्रोता जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। इसके साथ हमारे श्रोता हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, ये हैं छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया है वो हैं श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, भाई रामलाल चंद्रवंशी, ये हैं मध्य प्रदेश से। इसके साथ ही सही जवाब आया है हमारे पास, देखिए एक ही नाम अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं तो उनका नाम हम दोबारा से शामिल नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। इसके साथ हमारे श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया है वो हैं गौतम, बीपी गौतम, सरिता गौतम और ये हैं उत्तर प्रदेश से। सही जवाब ही हम लोग शामिल करेंगे, जिन्होंने गलत जवाब लिखा है या उनका जवाब सही नहीं है उनका हम नाम शामिल नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। पूनम वर्मा, दीपेश वर्मा, ये हैं छत्तीसगढ़ से। और इसके साथ ही कोलकाता सही जवाब देकर हमारे श्रोता बने हैं राहुल नगर, अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामण शेंडे और इनके साथ है प्रतिभा और प्रणय। इसके साथ ही हमारे श्रोता हैं जो हैं रतनमाला, विजय सुरालकर, ये हैं महाराष्ट्र से। कोलकाता सही जवाब दिया है हमें कोहरा से बबलू साहू और इसके साथ हैं जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू, ये हैं कोहरा से। इनके साथ ही श्रोता हैं हमारे गाँव पजौनिया, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। देखिए कई श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है, इतनी बार हमने रक्तदान किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ने में भी और गर्व सा महसूस होता है खुद को भी कि हम भारतीय हैं और हम एक दूसरे की मदद के लिए कैसे आगे आते हैं। चलिए अच्छी बात है, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान अपने स्वैच्छिक तौर पर किया है और आगे भी आप यूं ही करते रहिए ताकि किसी की जिंदगी हम लोग बचा पाएं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे श्रोता हैं राजू, बबीता और सुभाष योगी, जिन्होंने सही जवाब दिया है। इसके साथ है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, ये हैं छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता हैं ओजस अवाना, अनाया और रामधारी अवाना, ये हैं हांसी से, कुतुबपुर हांसी से। इसके साथ हमारे श्रोता हैं पश्चिम बंगाल से, कल्याण मुंबई से, किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक। सही जवाब दिया है हमें भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। जी हमारे श्रोता हैं इसके साथ ही खुशी गोस्वामी, हेमलता, लालगिरी गोस्वामी, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। इसके साथ सही जवाब आया हमारे पास वान्या सिंह रॉल, नारायणी और चंदूलाल, ये हैं हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल और गव्या, ये हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराऊं से। इसके साथ ही हमारे श्रोता जिन्होंने सही जवाब, जी हाँ सही जवाब दिया है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिल प्रसाद। सही जवाब आया है गांव हीरा वाली फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा और बिमला और पार्वती हिमांशु भीन के साथ। इसके साथ ही बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ये सभी हैं
अकरम हुसैन प्रिंस, ये सभी हैं सीतामढ़ी से। इसके साथ ही भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू। हमारे श्रोता हैं कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी लाडी। सरोज सैनी, राकेश सैनी, ये हैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। गुजरात से गांधीनगर से हैं हमारे श्रोता सुरेश राठौड़ और मंजुला राठौड़। हमारे श्रोता सही जवाब देने वाले हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अरबन आनंद और सत्यम आनंद झारखंड से। कोलकाता से सही जवाब है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। सही जवाब देने वाले श्रोता हैं कृतिका, विशु, विजय और वीना ढींगड़ा। हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से जुड़े हैं ये नंद किशोर घटे, संगीता, अंजलि और बाला साहेब करवा। इसके साथ ही कोलकाता सही जवाब देकर भागीदारी बनाई है अपनी बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजनी राय गर्ग और विकास गोयले ने।

फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव ये हैं संबलपुर कांकरे से। इसके साथ ही भवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम ये हैं उत्तर प्रदेश से। सही जवाब दिया है हमें रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी ने। इसके साथ सही जवाब दिया है हमें मध्य प्रदेश से हैं ये विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं ये। इसके साथ ही हमारे श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया है छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सही जवाब दिया है हमें ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय ये हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से हैं अंग्रेज, संदीप दत्ता और बंसी। इसके साथ ही सही जवाब आया है शाहू नगर यवतलाम महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और बेबी प्रियांशी। सही जवाब आया छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र साहू और आशीष साहू का। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, इनका भी सही जवाब आया है। कोलकाता से हैं हमारे श्रोता, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, जवाब इन्होंने लिखा है कोलकाता, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश से बेरड़ी से हमारे श्रोता हैं हुकुम, सुनीता और तनु करमकर। इसके साथ सही जवाब दिया हमें नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से हैं पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल। सही जवाब देने वाले श्रोता हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी ये हैं मधुबनी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। मोहम्मद यासीन, अजनान, साइमा नजवान, शरीफ नजवान और ये सभी हैं झारखंड से जिन्होंने सही जवाब देकर भागीदारी बनाई है आज के कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाढ़े और कृष्ण बाढ़े। इसके साथ ही हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से मुरली साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। सही जवाब दिया है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब से हमारे श्रोता हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निसा और यश मंसूरी। इसके साथ सही जवाब हमें दिया है बिहार से हैं ये फातिमा थापा, सोनम और आसमा थापा। सही जवाब आया हमारे पास टोंडी लाहौर से तुषार टोम, आरती डोमीन और खंडवा से निशा जाटव। एक ही मैसेज में दो जगह से नाम, चलिए बहुत बढ़िया और सही जवाब था। खंडवा से हमारे श्रोता हैं कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हीना सईद खोखर। इसके साथ हमारे श्रोता जो जुड़े हैं आज एस एम जावेद ये हैं झारखंड से। इसके साथ ही अनीता सैनी, गौरव सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी खंडवा से शशि मंदिर चौक से ये हमारे श्रोता जुड़े हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। रादौर से हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा। कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं वीरेंद्र कुमार लडवा, श्वेता और गोविंद हैं इनके साथ। कुंडी सेक्टर 5 सुरेख नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। इसके साथ सही जवाब आया है हमारे पास कृष्ण कुमार गुप्ता ये हैं उत्तर प्रदेश से। सही जवाब दिया है हमें छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं हर्ष अहूजा और सही जवाब हमारे पास आया है उड़ीसा से ये हैं हमारे श्रोता कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू। इसके साथ ही सही जवाब दिया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी ने। आरसी कामड़े और अरुण करुणा कामड़े हैं हमारे श्रोता जवाहर नगर दुर्ग से और ये श्रोता हैं हमारे हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया जमशेदपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही देखिए समय पर जिन्होंने मैसेज किए हैं उन्हीं के नाम हम लोग श्रोताओं के शामिल कर पाएंगे और जिन्होंने समय के बाद मैसेज किए हैं उनके हम लोग नाम शामिल नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं संतोष कुमार राव, भारती राव और जिन्होंने सही जवाब दिया है वो हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से सुदेश शर्मा, वैभव शर्मा, हार्दिक भारद्वाज। सही जवाब आया है कोलकाता, जी हाँ, फैसल ईमान बिहार से हैं ये। हमारे श्रोता हैं सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, जोहरी और हिरेन भाई। इसके बाद हमारे श्रोता हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में सही जवाब दिया है राजनांदन गांव से हैं नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू।

के साथ ही सही जवाब हमें दिया है देवशंकर तामुरिया ने, अजय देव और इनके साथ मास्टर अल कबीर भी हैं, ये सभी श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से। अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल भाई हैं, इनके साथ हैं, ये सभी हैं महाराष्ट्र से। पुराना तालाब डुमराव से हैं हमारे श्रोता वल्ली अंसारी और बक्सर विहार से हमारे श्रोता हैं राज एस अंसारी। इसके साथ ही हमारे श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल सपकाल, ये सभी हैं शास्त्री नगर बीड़ शहर से। इसके साथ ही वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस पिंकी और लवली। सही जवाब हमारे पास आया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से, एमपी से हैं ये, मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली और आनंद जोशी। इसके साथ हमारे श्रोता हैं कृष्णगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और राघव कुमार जी। तो ये सभी श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया, इसके साथ ही एक श्रोता और जिन्होंने गांव बांडी पंजाब से हैं ये ओम बगड़िया, क्रियाश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया। इनके साथ ही हमारे श्रोता हैं जो हैं रामपुर से सरिता मोय, गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम और ये सभी श्रोता रामपुर से। तो चलिए आप, ये सभी श्रोता थे जिन्होंने आज के सही जवाब का सही जवाब दिया है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से हमारे श्रोताओं हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रमों में और जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना नाम भी शामिल करवाते रहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे एक और विषय पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो श्रोताओं, बच्चों की हो चुकी हैं छुट्टियां, हो चुकी हैं क्या, हो गई हैं काफी दिनों से, और अभी सब लोग घूमने का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, जितने भी हिल स्टेशंस हैं उनकी मतलब दिन ब दिन न्यूज आ ही रही है कि वहां पर इतनी भीड़ हो गई है। तो प्लीज मत आइए वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जाइए, घूमने जरूर जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। बात इतनी है कि जब भी हम घूमने जाते हैं, कुछ खाने पीने का साथ लेकर जाते हैं, है ना, जैसे हम अगर ट्रेन में गए या बस में गए या लगा लो आप अपनी गाड़ी से भी गए, तो बच्चे हैं साथ में या हम बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई टिश्यू है, कोई खाने पीने के रैपर्स हैं, हम लोग खा पी कर सड़क पर ना फेंकें। सड़क पर क्या, हम कहीं भी ना फेंकें, कहीं भी इधर उधर हम लोग गंदगी ना फैलाएं। तो ये एक अपने दिमाग में हम लोग बिठा लें कि स्वच्छता जो है वो किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम सब अगर मिलजुल कर इस काम को करेंगे, स्वच्छ रखेंगे अपने देश को, तभी हम लोग स्वच्छता जो है वो अपना पाएंगे। सबसे पहले बात तो है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम थ्रो कर फेंकना चाहते हैं, वो हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। हमारे पास कैरी बैग्स होते हैं, हमारे पास लेडीज़ के पास तो बैग्स होते हैं, तो हम उसी में रखें जब तक हमें कोई डस्टबिन नहीं मिलता, और जब हमें डस्टबिन मिले तो उसके अंदर फेंक दीजिए। तो जब भी घूमने जाएं, बाहर के शहरों को भी, अपने शहर को तो हम सोचते हैं कब, है ना, कि हम स्वच्छ रखें, तो बाहर के, जब अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं तो शहर को क्यों नहीं। और हम जहां जा रहे हैं दूसरे शहर में, वहां गंदगी फैला कर आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो बाहर भी अगर हम जा रहे हैं तो साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए, इसके साथ ही एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए कार्यक्रम में, इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

तो श्रोताओं, आज हमने बात की रक्तदान दिवस के ऊपर, क्योंकि आज रक्तदान दिवस है। तो अब जो भी श्रोता, जो भी सुन रहा है कार्यक्रम को, अगर आप स्वैच्छिक तौर पर रक्तदान करना चाहते हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप रक्तदान कर सकते हैं। और हम तो ये चाहेंगे, देखिए, किसी की जान बचाने के लिए जिस रक्त की ज़रूरत पड़ती है, एक एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे अगर एक यूनिट देने से किसी की जान बच जाए तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की दुआओं में कितना असर होता है ये हमें नहीं पता। जब उस इंसान के पास वो रक्त पहुंचेगा, उसकी मुंह से निकली हुई दुआ हमारे काम जरूर आएगी। तो इसी के साथ निधि को इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। कार्यक्रम कैसा लगा आपको, लिखकर जरूर भेजिएगा आपकी बात aakashvani@gmail.com पर। तो चलिए, इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत इस गीत के साथ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि। स्वरांजलि कार्यक्रम में पहला गीत पेश है फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: जलवायु और शिक्षा। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सकें। क्या आप जानते हैं, 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत पेश है अदनान सामी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम शक्ति मंच।

कार्यक्रम शक्तिमान सुनने वाली सारी बहना ने राजेश बहन की राम राम। भणो आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि भणो मौसम जो है वो ऐसा ही हो रहा है कि एकदम तक गर्मी है तो कदे ज़्यादा मतलब ठंड हो जाए, वो किस तरह कदे आंधी तूफान आ गया, कदे बरसात होगी, और जब थोड़ा सा बरसा है ना तो हमने गर्मी तक राहत भी मिला है, पर इसे मौसम में भणो हमारा जो शरीर है ना उस पर तो बुरा प्रभाव पड़े है। यह बात तो आप जानो ही हो ना, क्योंकि एकदम तक गर्मी है और जिस तरह आंधी तूफान आई तो ठंडी हवा चल ली और गले आ गई बरसात, और आपके कपड़े कुपड़े जो धो रखे थे ना वो बाहर सूख गए, तो भाज के जब वो ठंड जावे तो बूंद लग गए। तो इसी में भाणो की है कि जो एकदम तक शरीर गर्म था आपका, वो जब बरसात लग गए तो गर्म सर्द हो जा, यानी आपके खांसी जुकाम ठंडा लगते एकदम तक यो हाल, और जब गला खराब हो जाए ना तो बेरा है भाणो की हालत हो है, ना कुछ खाण ना जी करे, ना पीण ना जी करे, और नाक तक पानी चल जाए। तो इस करके थोड़ा सा हमने इस मौसम में अपना ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ज़्यादा ठंडा पानी ना पीवें, जो फ्रिज का पानी हम पीवा है ना, या तो हो सके जितना आप घड़े का पानी पीवें, क्योंकि उसकी तासीर ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना गर्म, और उससे आपका जो शरीर का जो तापमान है वो भी सही बना रहा है। लेकिन हम क्या करा, बाहर तो धूप में जो कराए ना और आते कहेंगे पानी दे दे ठंडा सा, तो फ्रिज का पानी आप काट कर केयर करो, उसमें दूसरा पानी भी नहीं मिलाते, ठंडा पानी एकदम तो वो पी ले, और फिर एकदम तो क्या कहोगे मेरा तो शरीर आकड़ गया। बात तो सही है, क्योंकि पसीना आ रहा है, गर्मी है, और ठंडा पानी पियोगे तो नहीं होगा ना। तो उससे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हुआ है। तो भणो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरे का ध्यान किस तरह रखेंगे, अपना तो रखना दूर की बात है। तो भणो एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में जो ये खून है अगर हम उसका दान करें तो उससे कितने लोगों ने फायदा हो सके है, सोची कदे यह बात। तो आज हम इसे दो विषय पर बात करेंगे कि पहला है जो रक्तदान क्यों आवश्यक है, और भाणा दूसरा है अंगदान व शरीर दान के समाज को फायदे। बात समझ में आई ना आपके? हाँ, एक तो हम बात करेंगे शरीर के दान की, और दूसरी बात कर रहे हैं रक्तदान, क्योंकि आज है भाणो रक्तदान दिवस। तो सबसे पहले हमने ये बात समझ लेनी चाहिए कि भणो जो रक्त है यानी खून है वो कित बना है, कड़े बनाया जा है भला, अपने शरीर में ही बना है ना वो, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह साग सब्जी है, चले एक नहीं खानी तो दूसरी बना ली, दूसरी तो तीसरी बना ली, लेकिन अपने शरीर जो खून है वो एक मानव शरीर में ही बनाया जा है। कई चीज़ है पापा बना लेंगे, चलो उसका दूसरा जरिया भी काट लेंगे, नहीं तो मान लो आप टेलीविजन देख रहे हो, चल यू जी नहीं कराते, रेडियो सुन लिया, कई ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन जो खून है तो उसकी ज़रूरत है, तो हम कितने ले आवेंगे एक दूसरे पर, तई कोई चीज़ आपने लेनी है वो ले ली, लेकिन खून है वो जो भी हमारे शरीर के अंदर है, अगर आपने उस खून की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ की कमी है या आपने उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, डॉक्टर ने कहा है, तो वो कितने लोगे, किसी दूसरे आदमी तक लेना पड़ेगा ना। तो इस करके जो खून है भाणो वो एक मानव शरीर के अंदर ही बना है, और उसकी अहमियत कितनी है ये भी आप समझो हो, किस तरह उसकी ज़रूरत पड़े है। तो क्यों इसका महत्व बताया गया है कि रक्तदान जो करना है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाणो जब आप कहते हैं ना कि दान करना पुण्य का काम है, तो इसी तरह जो रक्तदान है भाणो वो बहुत ही पुण्य और हमारे जो जीवन है दूसरे आदमी का जो जीवन है वो देने का काम करा है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया जो रक्तदान भणो आपातकालीन स्थिति में, जिस तरह सड़क दुर्घटना हो जाए, कैंसर के जो पीड़ित है भाणो वो रोगी, और थैलेसीमिया से जो पीड़ित है या जो बच्चे, उनने मतलब जब हम खून दिया हाँ अपना उनके लिए, तो उनके लिए कि वो वरदान की तरह साबित हो है भणो, क्योंकि वरदान आप पे है। जब ये चीज़ अगर बाजार में वो मिल जा, ले भाई खाण खातरे चाहिए था हमने ले ली, लेकिन इसका तो कोई दूसरा और तरीका भी नहीं है ना, भाई आप कितने ले आओगे। तो अगर एक दूसरे की हम मदद नहीं करांगे तो भाणो, तो वो जिनने इसकी ज़रूरत है वो किस तरह से फिर बच पाएंगे। तो इस करके इस दान ने हम महादान भी कहा कि रक्तदान महादान, अगर हमारा खून किसी के काम आ सके तो इससे अच्छी बात और की होगी। क्योंकि भाणो देखो, जो मानव शरीर में बनाया जा है, यो बना है, तो यो कम है कि डॉक्टर भी तीन तीन लोगों का इसने फायदा मिला है
अगर हम अपना खून दें हाँ तो वो तीन लोगों के काम आ सका है, क्योंकि ये बात सही कही गया कि एक बार में किया गया रक्तदान अलग अलग तीन लोगों की जान बचा सका है, क्योंकि दान किए गए रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में विभाजित किया जा है। भणो इसका के महत्व है भणो जो हम रक्तदान कर रहा, क्योंकि जीवन की रक्षा कर रहा है। सड़क दुर्घटना हो, प्रसव संबंधी जटिलता हो, कैंसर के इलाज हो या थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियां हैं भणो, उसमें जो मरीज हैं एकदम तो उन्हें खून की जरूरत पड़ा, तो इससे क्या होगा कि भाई अगर मान लो एकदम तो ना दिया जा तो उनकी मृत्यु भी हो सका है। तो इस करके अगर उन खातर खून दिया जा पहले ही हम दे दें ताकि अस्पताल में वो खून मिल जाए और उसकी जान बचाई जा सके है। और भणो जिस तरह का है कि भी सीमित जीवन काल यानी जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल है वो केवल 42 दिन और प्लेटलेट्स का केवल 5 दिन का है, इसलिए अस्पताल में जो रक्त की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना जरूरी है। यानी कहने का भाव यो है कि मान लो मैंने खून रक्त दान कर दिया लेकिन जो उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं वो मान लो 5 दिन तक तो ठीक हैं, उसके बाद उनमें कमी आ जाए तो अस्पताल में जो वो खून रखा है वो फिर उस काम का नहीं रहता कि वो दूसरे मरीज ने इसे इसे मरीज ने दिया जा, लेकिन वो दूसरे खातर रख ले। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज आ जाए कि उसने ज़रूरत हो तो इस करके हमने लगातार करते रहना चाहिए कि भाई मान लो रक्तदान करा है 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद अगर हम करा तो किसी ना किसी कोई ऐसा रोगी है जो वो उसके काम आ सका है। भणो मानवता और आत्मसंतुष्टि यानी किसी ज़रूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराना, निस्वार्थ भाव से अगर हम ये सेवा करते हैं तो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके लिए हम एक बड़ा प्रमाण बन सके हैं। बात सही है। इब अगर हर जगह तय कितने तय भी हम ये ले सका तो कभी के ले लंदे, लेकिन इसमें क्या है भाणो आपका मतलब सारा ब्लड चेक भी करा जा है भी ये किसके काम आ सका है, कौन से के नहीं आ सका, कौन से ग्रुप का है, तो ये सारी चीज़ करी जा है। तो जो रक्तदाता है भाणो उसने भी इसका फ़ायदा वो है अगर आप रक्तदान कर रहे हो। भला किस तरह कि हृदय स्वास्थ्य है यानी नियमित रक्तदान से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहे है और जिससे दिल के दौरे यानी जो हार्ट अटैक कह दें हाँ उसका भी खतरा कम हो जाए है। और दूसरा भाई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच यानी आप एक बार अपना चेकअप करवाना जाओ हो जब तो पीछे तो लग गए है ना लेकिन जब आप रक्तदान करो हो तो उससे की है आपका पहले में तो सारा चेकअप होगा कि रक्त से पहले यानी रक्तदान से पहले आपके हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और पल्स की जांच करी जा है जिससे संभावित बीमारियों का जल्दी पता लग जाए। ये मान लो आपने कभी चेकअप नहीं करवाया लेकिन आपको हो गया मैं तो खून दान करना है, तो उस टाइम क्या होगा कि पहले हम तो आपका चेकअप करेंगे, आपका सारा निबेरा पड़ जाएगा आपका कोई बीमारी तो नहीं, आपका BP सही है, आपकी शुगर सही है, आप में खून कितना है और कोई और बीमारी तो नहीं है, वो सारी चीज़ आपने बेरा पड़ जाए तो हो गया ना फायदा। एक तो आप दान करने लग रहे हो और दूसरा आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है वो भी आपने बेरा पड़ जाए है, तो कितनी अच्छी बात है ना, फ्री में आपका काम हो गया। और दूसरा भणो ऊर्जा का संचार यानी रक्त के दान से शरीर का जो बोन मैरो नए रक्त का निर्माण करता है यानी कि आपके शरीर में खून और बढ़ना शुरू हो जाए। इफ जो पहले था कई बार क्यों है कि खून गाढ़ा होने लग जाए, कहेंगे ना भी आपका खून ज़्यादा वो हो गया तो आपने BP की समस्या हो जाएगी, दूसरी कोई मान लो होगी बीमारी, तो उससे ये है कि आपका जो बॉडी में शरीर में जो खून है वो सही चलता रहेगा, उसका जो प्रक्रिया है वो सही रहेगी। लेकिन अगर आप रक्तदान करो हो ना, क्योंकि जब आपका खून निकलेगा नालियाँ में तो जो और नया खून है वो बढ़ना शुरू हो जाए और उससे क्या होगा कि उसका जो शरीर में संचार है वो पूरी गति के साथ चलता रहेगा और आपके शरीर में एकदम स्वस्थ बना दे है। आप एक स्वैच्छिक और सुरक्षित प्रक्रिया के जरिए मानवता की भलाई में अपना योगदान दे सके हैं। बट अगर और भी कोई आपने जानकारी इसके लिए चाहिए तो वो आप इनसे ले सके हैं यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बट रक्तदान करना दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, बल्कि हालांकि यह इसका एक अहम हिस्सा है कि रक्तदान करने वालों को स्वास्थ्य संबंधी कई अनपेक्षित लाभ भी मिले हैं। अगर आप पहली बार रक्तदान करने के बारे में सोच रहे हो तो या फिर पहले भी कर चुके हो तो हो सके कि आपको इसके फायदे के बारे में बेरा भी होगा भणो। तो रक्तदान क्यों करना चाहिए,
रक्तदान वालों जीवन बचाव है। हम सभी देखा है कि कितना महत्वपूर्ण है, चाहे किसी को भी दुर्घटना के बाद मदद की जरूरत पड़ा है तो अस्पताल में फटाफट जावें और सोचें कि भाई हमने जल्दी से रक्त मिल जा, यानी उसके खून चढ़ाने की जरूरत है तो वो मिल जा, लेकिन उस खातर टाइम लग गया है। कई बार ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट खून चढ़ाना पड़ा है भी, कोई उसे ग्रुप का अगर मिल जाए तो गेल की गेल उसके वो खून चढ़ाया जा है, तो आप एक उसकी ज़िंदगी ने बदल सको हो। तो कितना मतलब आपकी ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि आप रक्तदान करें, तो इससे देखो आप कितने एक सोचने वाली बात है कि डॉक्टर जो है वो आप द्वारा जो रक्तदान कराया गया है, जो आपने मदद करी है लोगों के लिए, तो डॉक्टर भी उसमें आगे तीन तीन लोगों के लिए उस रक्त ने बचा कर रखा है, उनके लिए वो उसने मतलब उनको वो चढ़ाया जा है। तो इससे आप यूँ देखो कि अगर आपका रक्त तीन लोगों की जान बचा सका है तो इससे ज़्यादा और आपने खुशी की हो सका है, ठीक है ना। तो हमने रक्तदान भाड़ों करना चाहिए और यही शिक्षा अगर अगर हम अपने बच्चे ने दें और आपने देख देख कर समाज में जो आपके और साथी हैं और आपके साथ हैं वो भी इस बात ने समझेंगे और वो भी ये कदम उठावेंगे कि ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो भाड़ों बात हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन पहले कर लें थोड़ा सा मनोरंजन, सुनते हैं ये गीत।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो भनो जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे रक्तदान की, तो ये बात करा हाँ थोड़ी सी कि जो अंग दान है शरीर दान है, देखो अपने शरीर की ही हम बात करने लग रहे हैं, चाहे वो रक्त की बात है यानी खून की बात है, चाहे वो हमारे अंगों के दान की बात है। तो भनो जब दान का इतना महत्व हमारे इसमें माना गया है, जिस तरह हम दान पुण्य कर रहे हैं, कोई आटे का दान कर रहा है, कोई गेहूँ का दान कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, जैसा भी मौसम है उसके अनुसार हम दान करते रहा हाँ। जब जाटे हैं तो खेस कंबल ये बांटे जा हैं कि गरीबों में चलो ये दान कर दिया, ताकि जो गरीब आदमी है उसकी मदद हो सके और वो ठंड तय या जाडे तय बच सके। और इसी तरह गर्मी में अगर कोई प्यासा है उससे हम पानी पिला दें, भोजन करा दें, तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाए कि ठंडा पानी मिल गया पीने और खाने भोजन मिल गया, तो वो अपने आशीष दे है। इसी तरह भानो जो हमारा शरीर है, जब हम यानी मृत्यु हो जाए, जब वो किसी काम का नहीं रहता, तो क्या करे कि माटी में माटी रल गई, लेकिन मरने के बाद भी जो हमारे शरीर के अंग है ना, वो अगर हम किसी और ने दे दें जिसने ज़रूरत है, तो वो अंग हमारे उसके शरीर में जिंदा रहे हैं, हम मर के भी मर नहीं पाते। बात यो है कि जो हमारे घर वाले हैं ना, वो ये देखेंगे कि भाई ठीक है उसकी आत्मा निकल गई या वो चल गया मरा गया, तो उसके जो अंग हैं जब किसी की उस ज़रूरतमंद ने वो दे दे हैं, तो उसके ज़रिए वो हमने याद करते रहें, यानी हम मर के भी मरते नहीं हैं। बात सही है ना। अब किसी की आँख नहीं है, आँख खराब है, या उसको ये है कि भी आँख मिल सका, तो डॉक्टर कह दे हैं भाई देख तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, आँख और चढ़ाई जाएगी, तो आपने जो दुनिया है आप उसने आराम से देख सको हो, किसे रंगों हैं, किस तरह का पानी का रंग है, किस तरह हरियाली है, कैसा मौसम है, ये सारी चीज़ें उसने बेरा पटा है। और वो किस तरह होगा जब आप अपने अंगों का दान करेंगे। बात सही है भानो, आप अपनी मर्जी तय, मान लो आपको कभी मैंने अपना नेत्र दान करना है, या आपने अपना दिल है वो दान करना है, अपने गुर्दे हैं वो दान करने हैं, और कई तरीके हैं कि अपना पूरा शरीर है वो दान करते हैं। भाई मरने के बाद मेरा शरीर किस काम आवेगा, जलेगा ना, तो वो कहें कि भी इसमें जितने भी अंग हैं जो किसी के काम आ सकें, यानी आपकी जो त्वचा है वो भी काम आवे है, आपका हाथ है, आपका पैर है, सारी चीज़ काम आवे, तो वो अगर आप किसी के काम आ सको तो हमने अपने शरीर का दान कर देना चाहिए। और ये भनो क्यों ज़रूरी है, देखो ज़रूरी भी है क्योंकि जो शरीर दान है भनो उससे हमारा मतलब है कि मृत्यु के बाद चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए अपने नश्वर शरीर को समर्पित कर देना, यानी समाज को इसका सबसे बड़ा फायदा बनो किस तरह है कि इससे भावी डॉक्टरों को बेहतर प्रशिक्षण मिलता है। इब आप कह देना कि भी हमारा छोरा तो डॉक्टरी की पढ़ाई करा है, बहुत अच्छी बात है, आप सोचो कि डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन उस डॉक्टर ने भी तो उस शरीर का सारा चेकअप करना पड़ा है, और वो जब करेगा, जब वो चीज़ सीखेगा, तो सीखेगा कितने जिसमें वो कॉलेज में पढ़ने लग रहा है, मेडिकल कॉलेज में, तो उड़े के है कि जो डॉक्टर हैं तो वो जब कोई मर जा है तो अपना शरीर दान कर जाए, तो उसने वो उन बच्चों तक दिखावे हैं भाई ये देखो इसके शरीर के ये अंग हैं, तो बाहर के तो सब ने दिखा, वो तो आप रोज देखा कि मेरी ये नाक किसी है, मेरी आँख किसी है, कान किसे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो बीमारी हो जाए, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, ये तो हमारे शरीर के अंदर है ना, जो हमारी रक्त कोशिकाएँ हैं, कितने खून कौन सी नलियां में कौन लग रहा है, वो सारी चीज़ जब आपकी मृत्यु होगी है उसके बाद वो आपका जो शरीर है उसने वो काट के जिस हिस्से का जो चीज़ दिखानी है वो चीज़ बालकों तक उनते जो डॉक्टर बनने वाले हैं बच्चे उन्हें दिखाई जा है, समझाई जा है कि किस तरह से ये अंग काम कर रहे हैं, अगर ये खराब हो गया तो किस तरीके से हम इसने बदल सका हाँ, दूसरे के अगर शरीर में इस अंग को डालना है, मान लो खराब हो गया तो दूसरे का किसी का लगाया जा, किस तरह वो लगाना है, वो चीज़ बालका तक सिखाई जा है। और उसके बाद क्या मानो जिस तरह कैंसर है, अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी है, इसका इलाज करना है तो नई नई दवाइयाँ बनानी पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ बालका तक सिखाई जा है। और वो किस तरह सीखेंगे, वो नहीं होते सीखेंगे ना, इब चार्ट बना दें हाँ स्कूल में, और बच्चा ने जिस तरह हम सिखावा के बिला ये देखो ये केला है वो बना के दिखा दिया, ये सेब है तो वो हम शरीर के अंग भी बना के दिखा था, लेकिन प्रैक्टिकली आपके घर में जब एक आप फल फ्रूट लेकर आए हो घर में, वो सेब आप उसने काट के दिखाओगे और वो बच्चा खा के देखेगा तो भाई यू ऐसा है, ये देखो। तो इसी तरह जब हमारे जो शरीर के अंग हैं वो उनते दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तो वो जल्दी सीखेंगे। और उन्हें जब वो हाथ लगा के देखे हैं तो उस चीज़ से उन्हें महसूस हो है भी अच्छा यो किस तरह धड़का है, किस तरह काम करे है, वो सारी चीज़ का उन्हें अंदाजा हुआ। तो जब तो आगे अच्छे डॉक्टर बने हैं और आपको ना कि बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, तो वो इसी तरह वो है, वो चीज़ सारी बालक सीखा है और ये आगे आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित हो हैं। और तो इससे यह है कि जो चिकित्सा शिक्षा है बनो उसमें सुधार आवा है, यानी मेडिकल जो छात्र हैं उन्हें जो मतलब सर्जन है मानव शरीर की आंतरिक संरचना किस तरह की है वो समझने में उन्हें आसानी हो जाए। और उसके बाद बड़ो नई नई जो तकनीक है उनका विकास हो है, उससे उन्हें बेरा पटे कि नहीं अब ये अंग छोटे हैं ये बड़े हैं तो किस तरह की हमने मशीनरी चाहिएगी, उसके अनुसार देख कर वो उस पर काम करे हैं। और बीमारियां पर शोध भी करा जाए भी यह बीमारी थी तो इसमें हमने किस तरीके तक करना, यानी वास्तविक मानव जो उत्तक है उनका अध्ययन और बीमारियों के विकास में जो अनुवंशिक बदलाव है उनको समझने में सीधा असर उन पर पड़ा है। बड़ो अंग दान से जीवन रक्षा, हालांकि पूर्ण शरीर दान अलग है लेकिन ब्रेन डेड व्यक्तियों के अंग दान जिस तरह हृदय किडनी लिवर ये कई जरूरतमंद लोगों तक दिए जा सके हैं और उनसे उन्हें फायदा मिल सका है। बड़ो चर्चा तो देखो करण का जी कर रहा है लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन और कर लिया और सुनते हैं ये गीत।

तो मानो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भाई अंग दान यानी पूरे शरीर का दान हम करें तो उसका कितना फ़ायदा है। देखो जिसने मरीज है जो उसने तो फ़ायदा है ही, तो हमने उससे ज़्यादा फ़ायदा है, बात सही थी ना या। और इसी तरह जो हम रक्तदान की बात कर रहे थे तो मानो ये दान इसे हैं जो दूसरे मानव ने जिंदगी दे हैं, तो अगर हम दूसरे ने जिंदगी दिया हाँ बनो तो उससे हमारा जीवन भी संवर जा है। और क्या कराना कि अगर किसी के होठा पे खुशी आ जाए हंसी आ जाए तो मानो उसने देख कर ना हमारे दिल में भी कितनी खुशी हो है, हमारी आत्मा कितनी प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से हमने लोगों की मदद करनी चाहिए बनो। और आपके साथ साथ और भी जो जुड़ना चाहें उनमें भी आप जोड़ो ताकि ये जो शुभ कार्य है वो हमने कर लेने चाहिए। और मानो इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होया। सारी बहना ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति मंच FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।

0: सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: बाल सभा में आए सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं और सुनने वाले जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उन सभी का भी स्वागत करते हैं। भाई आजकल तो बच्चे खूब मस्ती के मूड में हैं क्योंकि छुट्टियां आरंभ हो चुकी हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उन सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं। आप सबकी भी छुट्टियाँ चल रही होंगी? छुट्टियों में कुछ पढ़ लिख रहे हैं? जी दीदी तो बड़े अच्छे से बोल देते हैं, लेकिन मुझे सब पता है आप सोकर लेट उठते हैं। बताइए बताइए।
2: नहीं दीदी।
0: कुछ कह रहे हैं जी दीदी, जो सच बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जी दीदी, और जो झूठ बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो कह रहे हैं नहीं दीदी। और हमने ये भी देख लिया कि साथ ही एक बच्चे ने दूसरे को कोहनी मारी है। अरे ये आपने नो दीदी और यस दीदी, अरे इस चक्कर में मत उलझिए भाई, हम तो यूं ही आपसे पूछ बैठे हैं। चलिए अब ये बताइए कि छुट्टियों को आप किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहले ये खुशबू बच्ची हमें बताएगी कि क्या आप कहीं खेलने भी जाते हैं?
3: जी दीदी।
0: क्या खेलते हैं?
3: बैडमिंटन
0: खेलते हैं। और कहीं आप नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं खेलने, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर?
3: जी दीदी।
0: गए हैं? अरे वाह क्या बात है। तो आज तो बताइए स्टेट लेवल पर गए हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर?
3: स्टेट
0: लेवल पर आप गए हुए हैं। भाई हरियाणा की तरफ से आपने रिप्रेजेंट किया था?
3: जी दीदी।
0: अरे वाह क्या बात है। तो आज तो हमारे पास भाई स्टेट लेवल की एक खिलाड़ी आई हुई है बैडमिंटन की, तो यूं भी इनका एक बार फिर से स्वागत कर देते हैं खुशबू आपका हम। और इधर चलते हैं, ये बच्चा अपनी छुट्टियां कैसे व्यतीत कर रहा है बताइए?
4: पढ़कर।
0: भाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। ये बताइए सुबह कितने बजे उठते हैं आप, जल्दी से बताइए?
4: 8 बजे।
0: 8 बजे उठते हैं? भाई 8 बजे तो सूरज देवता बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि आधा दिन ही बीत गया है, तो थोड़ा सा और जल्दी उठा कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी उठने की। और इसके साथ जो बच्चा बैठा है वो बताएगा कि वो कितने बजे उठता है, बताइए?
4: 9 बजे।
0: अरे बाप रे और भी देरी हो गई है। तो और इधर चलते हैं हम इस बच्ची की तरफ, ये कितने बजे उठती है सुबह?
5: 10 बजे।
0: ओ माय गॉड 10 बजे, भाई नहीं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वाकई आज तो मुझे ऐसा लग रहा है बाल सभा में भी मस्ती के मूड में ही सब बच्चे आए हुए हैं, और जानबूझकर 8 बजे 9 बजे। अब मैं किसी और बच्चे से पूछूंगी तो वो 11 बजे बोलेगा, इसलिए मैं पूछूंगी ही नहीं कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं। तो अब आप ये बताइए छुट्टियों में एक बच्चा तो ऐसा था जिसने मुझे अभी ये बताया है कि वो बैडमिंटन खेलता है, और भी कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो खेल खेलने जाते हैं? आप बताइए कौन सा गेम खेलते हैं?
4: स्विमिंग।
0: स्विमिंग करते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। अभिनंदन आप बताइए क्या करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं?
6: नहीं दीदी।
0: कोई गेम जरूर खेला कीजिए, इससे आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे ज्यादा। इस बच्चे से पूछते हैं कि क्या गेम खेलती है ये?
6: जी दीदी।
0: कौन सी गेम खेलती हैं?
6: बैडमिंटन। शाम को
0: बैडमिंटन शाम के इस वक्त खेलती हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो देखा होगा आपने कि भारत की जो सरकार है इस समय वो भी खेलों को बहुत महत्व दे रही है, और खेलों में जो बच्चे जीत कर आते हैं उन्हें बहुत सारा इनाम भी मिलता है, ट्रॉफीज भी मिलती हैं, आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और कई कई जगह पर तो कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। तो खेलना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे बिल्कुल मिस ना कीजिए, और छुट्टियों में जल्दी उठकर जरूर खेलने जाइए, कुछ एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कीजिए ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और आप स्वस्थ रहें। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बच्ची हमसे जिक्र कर रही थी, तो और उस बच्ची ने हमें यह भी बताया कि वो ऊपर कुछ लिख कर लाई है, तो हम स्वागत करते हैं उस बच्ची का, पर सबसे पहले पूछते हैं उस बच्ची का नाम। क्या नाम है आपका?
7: खुशबू।
0: खुशबू क्या लिख कर लाई है आज आप?
7: श्री गुरु अर्जुन देव जी के बारे में।
0: तो आप हमें भी बताइए कि क्या लिख कर लाई हैं, और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी जानकारी दीजिए कि ये गुरु अर्जुन देव जी का जन्म कहाँ हुआ था और क्या किया इन्होंने देश के लिए।
7: 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के सरताज कहा जाता है। आप शांति के पुंज, मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी तथा अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। जन कल्याण के लिए आपने जो कार्य किए वह अपनी मिसाल है। वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अतः स्नेह था। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद थे। उस वक्त के हुक्मरानों को सिख धर्मों का दिनों दिन बढ़ना रास नहीं आ रहा था। गुरु अर्जुन देव जी ने शांति का संदेश दिया और सुखमनी साहिब उनकी अमरवाणी।
0: ये बहुत ही अच्छी सी जानकारी आपने दी हमें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा कि सुखमनी साहिब उनकी अमर वाणी है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन चढ़ते ही सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। सुखमनी साहिब जो है ये 24 अष्टपदी है और इसको पढ़ने से मन को शांति मिलती है। सुखमनि सुख अमृत प्रभु नामू, भगत जना के मन बिसरामू। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। तालियां हो जाएं भाई इस प्यारी सी बच्ची के लिए। और इसके साथ ही हम चलते हैं अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
2: अनुष्का।
0: अनुष्का, अनुष्का क्या सुनाएंगी आज हमें?
2: रानी लक्ष्मीबाई पर एक कविता।
0: अरे क्या बात है, आपको जरूर पता होगा कि 18 तारीख है और जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका भी शहीदी दिवस है।
2: जी दीदी।
0: बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे इतने जागरूक हैं कि वो ये सब चीजें याद रखते हैं कि कब हमारे देश में क्या पर्व है या फिर कौन सा शहीदी दिवस हम मना रहे हैं या फिर किसकी जयंती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे जागरूक हैं। तो सुनाइए अनुष्का, लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता आप लेकर आई हैं वो।
2: हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, व्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी।
0: बहुत ही प्यारी सी कविता। भाई ताली बजाना भूल गए क्या? तालियां तो बजाइए। बहुत ही अच्छी एक कविता हमें सुनाई हमारी अनुष्का ने और बहुत मज़ा आया हमें सुनकर और इसी बहाने हमने झांसी की रानी को याद भी किया। तो आप सबको पता ही होगा कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र

0: कैसा लगा ये देशगान?
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि देशभक्ति की बात तो जब जब होती है वो हमें अच्छी ही लगती है और लगनी भी चाहिए। कहते हैं ना, वो दिल पत्थर का दिल है जिसमें देश प्रेम नहीं है, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वो इंसान इंसान ही नहीं है। तो हर व्यक्ति के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। और अब चलते हैं अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
2: कर्मण्या।
0: भाई कर्मण्या क्या लाए हैं आज हमारे लिए?
2: रिडल्स
0: यानी पहेलियां। पहेलियां बुझेंगे आप। चलिए सब बच्चे तैयार हैं पहेलियां बुझने के लिए?
1: जी दीदी।
0: तो चलिए कर्मण्या बुझिए अपनी पहली पहेली।
2: वह कौन सी चीज है जिसे अगर तोड़ दिया जाए तो तोड़ देने पर भी आवाज नहीं आती?
0: तोड़ देने पर भी आवाज नहीं आती। चलते हैं इस बच्ची की तरफ। क्या नाम है इसका?
3: अनुष्का।
0: हाँ जी, क्या जवाब है इसका?
3: वादा।
0: सही जवाब है।
2: जी दीदी,
0: तालियां हो जाए। और अगली पहेली कर्मण्या की कौन सी है?
2: उसका नाम बताओ जिसे पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है।
0: अरे, पीटने पर लोगों को मजा आता है। कौन बताएगा इसका सही जवाब? हाँ जी बताइए।
4: ढोलक।
0: भाई सही जवाब है।
2: जी दीदी,
0: तालियां हो जाए। तो अब अगली पहेली।
2: ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं?
0: लोग गाना गाना शुरू हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है बताइए?
3: बर्थडे केक।
0: सही जवाब है।
2: जी दीदी,
0: बहुत अच्छी पहेली थी। तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छी पहेलियां कर्मण्या आपने बुझी। और अब इसके बाद थोड़ा सा माहौल और बदलते हैं और चलते हैं अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है इसका?
4: ख्याति।
0: क्या सुनाएंगी आप हमें?
4: योग दिवस पर कविता
0: सुनाएंगी। भाई आपको जरूर पता होगा कि 21 जून आने वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन तो सभी लोग योगा करते हैं। यूं तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, पर योगा तो हमें हर रोज ही करना चाहिए। भाई हम तो करते हैं, आप करते हैं कि नहीं करते बताइए? कौन कौन योगा करता है? अरे वाह, ये खुशबू तो बहुत ही अच्छी बच्ची है। योगा भी करती हैं, कर्मण्या भी करते हैं, अभिनंदन भी योगा करते हैं, और इधर से अनुष्का ने भी अपना हाथ ऊपर उठा दिया है कि वो भी योगा करती हैं। तो भाई योग करने से हमारे अंदर तंदुरुस्ती रहती है, मन भी खुश और प्रसन्न रहता है, और साथ ही साथ हम स्वस्थ तो रहते ही हैं। तो इसीलिए इस एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। लेकिन हमें योग हर रोज करना चाहिए। और अब सुनेंगे अपनी प्यारी सी ख्याति की कविता, जो कि योग दिवस पर है। सुनाइए।
4: भाई अपने तन से

0: से दूर कुरोग करें और योग करें और योग करें। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा। रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा। सूर्य उदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रियाएं, सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया। उदाहरण कोई बन जाए वह उद्योग करें और योग करें और योग करें। सांस सांस द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें और योग करें और योग करें। सभी शक्तियों का यह तन है सुंदर एक खजाना। योगिक क्रिया कपालों द्वारा सक्रिय इन्हें बनाना। फल मेवा पकवान दूध घी सब कुछ मिला प्रकृति से। हमने अपना खाना पीना ही किया विकृत दुर्मति से। ज्ञान और विवेक से हम सब भोग करें और योग करें और योग करें
1: और योग करें और योग करें। तालियां हो जाएं। ये बहुत ही अच्छी सी कविता थी और आपने एक छुपा छुपा संदेश भी दे दिया सुनने वालों को भी और बच्चों को भी कि योग करने से तन मन स्वस्थ रहेगा और योग आसनों के नाम भी आपने लिए कि इस आसन से ये हमें फायदा होता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी ये आपकी कविता थी और संदेश भी अपने आप में समेटे हुए थी। अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: अभिनंदन।
1: अभिनंदन क्या सुनाएंगे? अभिनंदन
2: पहेलियां।
1: पहेलियां बूझेंगे। तो चलिए माहौल फिर से बदल गया और पहेलियों की तरफ हम चलते हैं। तो बुझिए अपनी पहली पहेली।
2: काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, भलकत्ती है पर डोर नहीं, बंधते है पर डोर नहीं, बताओ कौन हूँ मैं?
1: कौन है भाई? काली है पर काग नहीं। हाँ जी बताइए।
2: चोटी।
1: चोटी सही जवाब है।
2: जी दीदी।
1: तालियां हो जाएं। हाँ जी अगली पहेली।
2: भूजो भैया नई पहेली, जब काटो तो नई नवेली।
1: पूछो भैया नई पहेली, जब काटो तब नई नवेली। बताइए बताइए बताइए, जवाब दीजिए।
2: पेंसिल।
1: पेंसिल सही जवाब है।
2: जी दीदी।
1: तालियां। और अगली पहेली के साथ अभिनंदन है फिर से एक बार हमारे साथ।
2: ऐसा क्या है जिसका आना भी खराब और जाना भी खराब?
1: आना भी खराब और जाना भी खराब, ये क्या हो सकता है? चलिए इसका जवाब किसी को भी नहीं आता अभिनंदन, मुझे भी नहीं आता, आप ही बताइए इसका सही जवाब।
2: आंख नेत्रा शतोर।
1: आंख आना भी, अच्छा ठीक है बिल्कुल सही जवाब आपने दिया भी। आंख आना जिसको कहते हैं, आंख की बीमारी होती है वो, आंखें जब एक लाल लाल सी हो जाती है, एक संक्रमित रोग है ये आंखों का, अगर ये हो जाता है तो उसको आंख आना कह देते हैं, जो आम भाषा है बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। और आंख का जाना भी बुरा है बिल्कुल भाई, दृष्टि तो बहुत ही कीमती है, हमारी आंखें बहुत कीमती हैं। आजकल जो सभी बच्चे हैं अपनी आंखें हमेशा मोबाइल में गड़ाए रहते हैं और जब देखो कंप्यूटर करते हैं, जब देखो टीवी देखते हैं। आप भी ऐसा जरूर कर रहे होंगे छुट्टियों में, कर रहे हैं ना? देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सब, यानी कि थोड़ा थोड़ा आप भी ये ज्यादा काम करते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है बच्चों कि जो ये हमारी आंखें हैं ये कुदरत की अनमोल देन है, तो इन्हें आपने खराब नहीं करना है, इनकी देखभाल करनी है। और देखभाल कैसे होगी? अगर आप सही वक्त पर उठकर सबसे पहले कहते हैं सुबह सुबह आंखों में ना पानी से छींटे लगाइए, ताकि उससे भी दृष्टि जो है वो हमारी तेज होती है। तो आंखों का हर संभव तरीके से आप देखभाल कीजिए ताकि ये आंखें दूर तक आपका साथ दें, क्योंकि आंखों के बिना ये दुनिया रंगहीन हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सभी की आंखें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? मोबाइल कम करना होगा, और बताइए बताइए और क्या कम करना होगा?
2: कंप्यूटर
1: और टीवी भी कम करना होगा। बिल्कुल सही कहा ख्याति। तो कंप्यूटर और टीवी, अब आपने खुद कहा है कंप्यूटर और टीवी, अब आपके घर से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि देखो दीदी ये फिर से कंप्यूटर और टीवी ज्यादा कर रहे हैं। बताइए, नहीं आएगी ना मुझे ये शिकायत?
2: जी दीदी।
1: बहुत अच्छी बात है, और सभी बच्चे बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और इसी के साथ हम चलेंगे फिर से एक बार अभिनंदन की तरफ, जो अगली पहेली के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। पूछिए अभिनंदन अगली पहेली।
2: लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता रहे, बताओ कौन हूँ मैं?
1: बताइए बताइए।
2: ट्रेन।
1: ट्रेन सही जवाब है।
2: नहीं दीदी।
1: गलत जवाब हो गया अनुष्का। और अब बताइए, आप बताइए।
2: आग और धुआं।
1: आग और धुआं सही जवाब है।
2: जी दीदी।
1: सही जवाब है। तालियां हो जाए। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ, नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अभिनंदन ने मुझे इशारा किया है कि उसकी एक और पहेली भी है। बुझिए,
2: मैं मरूं मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो, मैं कौन हूँ?
1: मैं मरूं मैं कटूं, ये तो मैंने भी बूझ लिया है, पर बच्चों में से बताइए कौन बताएगा इसका सही जवाब। मैं मरूं मैं कटूं, तुम क्यों रोए, बताइए बताइए।
2: अनियन।
1: अनियन बिल्कुल सही जवाब, प्याज इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है। प्याज हम काटते हैं तो मतलब प्याज को दुख होना चाहिए और हमारी आंख से आंसू खुद गिरते हैं। चलिए अगली पहेली।
2: काला घोड़ा सफेद की सफारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी।
1: हाँ जी, जवाब दीजिए सही।
2: तवा और रोटी।
1: तवा और रोटी सही जवाब है
2: जी दीदी।
1: तालियां तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छी अच्छी पहेलियां बच्चे लेकर आते हैं और ये देखिए मेहनत प्रयत्न करते हैं, ये कहीं कहीं से पहेलियां ढूंढ कर लाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी कार्य के लिए मेहनत करते हैं। जिस तरह से यहाँ बाल सभा कार्यक्रम में आने के लिए आप रचनाएं इकट्ठी करते हैं, फिर उन्हें नोट करते हैं पेपर पे, फिर यहाँ आते हैं, तो मेहनत तो हर कार्य में इन्वॉल्व होती ही है। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ाई में भी बिल्कुल टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करेंगे
0: जी दीदी,
1: और अगर आप आज से ही मेहनत शुरू कर देंगे तो ये नहीं है कि आज मेहनत की और कल छोड़ दी, नहीं, सारा साल आप एक लेवल पर आकर एक सारता से मेहनत करते रहिए ताकि जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आपका बहुत अच्छा निकले। तो अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
3: दिया।
1: दिया, बड़ा प्यारा नाम है दिया आपका। आप क्या सुनाएंगी हमें?
3: कविता।
1: कविता सुनाएंगी तो सुनाइए।
3: पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तिरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर लुम्बम, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता। तो बहुत ही अच्छी कविता हमें दिया ने ये सुनाई और ये हमें जो प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति हमें एक संदेश देती है, एक छिपा हुआ संदेश है प्रकृति में, वो संदेश इन्होंने हम सबको कविता के माध्यम से सुनाया। जैसे इन्होंने कहा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, भाई पर्वत जो है वो हमें एक संदेश देता है कि हर इंसान शीश उठाकर जीना सीखे और जिए और ऊंचा ज़िंदगी में उठता चला जाए। इसी तरह से आकाश भी हमें एक संदेश देता है कि जिस तरह से मैं इतना बड़ा हूँ, अंबर आपने देखा है ना, नीला अंबर कितना बड़ा अंबर है, वो फैला हुआ अंबर है, वो भी हमें संदेश देता है कि इतना ही फैलकर और इतनी ही दूर दूर तक आपकी प्रसिद्धि और ख्याति फैल जानी चाहिए। जब आप बड़े हो जाओ तो कुछ इस तरह के काम करो कि आपकी प्रसिद्धि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
4: रुद्रा गोस्वामी।
1: रुद्र गोस्वामी, तो रुद्र आप क्या सुनाएंगे हमें?
4: मंत्र।
1: मंत्र सुनाएंगे, सुनाइए भाई।
4: ओ

0: अमृता
1: गालियां हो जाए। कितना छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा, और ये मुश्किल मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो बहुत ही सुंदर सा आपने अपनी सुंदर सुंदर आवाज में हमें ये मंत्र सुनाया रुद्र, और हमें बहुत ही मजा आया। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया होगा ये प्यारा सा मंत्र सुनकर। और अब चलते हैं अगली कलाकारा की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: मुनीरा।
1: मुनीरा, तो मुनीरा आप क्या सुनाएंगी?
2: कहानी।
1: कहानी सुनाएंगी, तो सुनाइए, स्वागत है आपकी कहानी का।
2: एक व्याकरण का पंडित नाव में बैठा था। उसने मलहा से व्याकरण की बड़ी प्रशंसा की और फिर उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? बेचारा मलहा, व्याकरण क्या जाने, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसने कहा, पंडित जी, हम नहीं जानते कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के पंडित ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने अपनी अब तक की उम्र यों ही गवा दी। मलहा को ये सुनकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ ना बोला। संयोग की बात है कि उस समय बड़े जोर का तूफान आया, नाव ऊपर नीचे होने लगी। मलहा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज, ये तो बताइए कि आपको तैरना आता है या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता। मलहा ने कहा, महाराज, अब तो आपकी सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि नाव भंवर में पड़ गई है और डूबने वाली है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए।
1: बहुत ही सुंदर कहानी।

और बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कला पर या अपने गुण पर, क्वालिटीज हैं उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरह से आपने अपने भाव व्यक्त किए इस कहानी के माध्यम से। और मुझे लगता है इस कहानी के साथ ही अब हमें वक्त कह रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सब बच्चे मिलकर बोलेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

0: जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।
1: मैं

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदनलाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते।
1: मैं क्या जानू क्या है, जादू है, जादू है, जादू।
0: एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया।
1: तेल में दिया मोरा था नन्ना होए रे, तेल में दिया मोरा था नन्ना होए रे।
0: इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने यह गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थी और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका यह सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसकी डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का ये भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम गया।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो, मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

यहां से राजखोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राजखोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राजखोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राजखोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राजखोसला ने बनाई काला पानी।

इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और सीआईडी दोनों के हीरो देव ही।

0: काला पानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल। ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

सन 1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

दिन थे जब जानी मानी निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना साल 1962।

एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राजखोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राजखोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राजखोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी।

0: सन 1966 मेरा साया
1: नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके
0: सन 1967 अनीता
1: मैं

थोक ऑनकी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी लज्जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहर अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, इसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसा साहब की, राज खोसा साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: आंखें देवेंद्र गोयल,
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहते दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
0: ओह गॉड,
1: मैंने इस ट्यून को मनन कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
0: जी
1: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मुखड़ा

0: क्या है जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया, एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो, और दो तीन मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब, मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
1: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत।

इस बीच सन 1966 में राज खोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।

इतना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे

आशा पारेख के साथ राजकोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशी तुझी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी, नाटकीय फिल्मों

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। राज खोसला को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी साहिल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना।

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे। बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई सनी।

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुत करता तेजश्री कामले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान

0: के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो।

0: कुमार जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओ, आपने मदन मोहन का सर्वद्ध किया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवान अपनी थी, धन्य वो उनकी जवानी।

यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

शेवन रिजवी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने, महेंद्र कपूर आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी दिल और मोहब्बत।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफ़र की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता, एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद, हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ, होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है, ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो, दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत भाग्य विधाता फिल्म को हरियाणा में कर मुक्त करने की घोषणा की है। कल शाम पंचकुला में अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले की एक घटना पर आधारित यह फिल्म बहुत प्रेरणादायी है। इस तरह की फिल्में मुसीबत के वक्त नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म बताती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल होगा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को ऐसी प्रेरणादायक फिल्म देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, विधायक सतपाल जांबा, रणधीर पनिहार और शक्ति रानी शर्मा सहित कई नेताओं ने भी यह फिल्म देखी। इसके अलावा हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा समेत कई अधिकारी भी फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस विशेष स्क्रीनिंग में शामिल रहीं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम HSIIDC के प्रबंध निदेशक को साहा औद्योगिक विकास केंद्र में तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी करने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आपात समय में तुरंत कार्रवाई की जा सके। श्री विज ने कल साहा औद्योगिक विकास केंद्र में ग्लासवेयर फैक्ट्री में लगी आग की घटना का जायजा लेने के उपरांत यह निर्देश दिए। उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में दमकल विभाग की कोई गाड़ी तैनात न होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में पानी भरने के लिए वहां पानी का बोर भी करवाया जाए। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि साहा औद्योगिक केंद्र में लगभग 300 यूनिट हैं और वहां काफी श्रमिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां दमकल विभाग का इंतजाम होना जरूरी है और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 21 जून को राज्य भर में पुनः आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी ना हो। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पीने के पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके। पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विभाग निगम ने अपने 3 प्रमुख होटलों, होटल माउंट व्यू, होटल शिवालिक व्यू तथा होटल पार्क व्यू में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का उपयोग शुरू कर दिया है। निगम के प्रवक्ता ने कहा कि PNG को अपनाना निगम की स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सतत शहरी विकास के लिए सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा की जेलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कल भी इस उपलक्ष्य में विभिन्न जेलों में आयोजित रक्तदान शिविरों में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कल विभिन्न जेलों से 525 यूनिट रक्तदान किया गया। फरीदाबाद निवासी एवं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम रामगढ़ के रहने वाले मनीष ठाकुर ने 12 से 14 जून तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2026 ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। हरियाणा के कारागार महानिदेशक आलोक मित्तल के मार्गदर्शन में पलवल जिला की कारागार एवं पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के संयुक्त तत्वाधान में तथा सरकारी रक्त बैंक के सहयोग से कल जिला कारागार परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में जेल कर्मियों एवं अन्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कारागार अंबाला द्वारा भी कल जिला रेडक्रॉस समिति अंबाला के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोता कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है। उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप ख़रीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है। दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हमसफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हमसफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है। देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है, आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं, तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है, मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफ़र, और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों, यादों, इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफ़र हमें अपने ही दिल से मिलने, मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफ़र अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के ज़रिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफ़र कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों कि अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, ज़ीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Program Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Janaushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on the ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. Union Minister of Minority Affairs Kiran Rijiju has said that the life, quality and overall situation of the minority communities in the country have improved significantly over the past 12 years. In an interview with the National Daily, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas has ensured that the benefits of development reach every section of the society.
1: Minorities are better in India. 12 years after Modi ji has become the Prime Minister, the life, the quality, the overall situation of minority communities have become better because life of every Indian has become better.
0: In Jharkhand, at least 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have been killed in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people were killed in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsawan districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. The Criminal Investigation Department CID is interrogating Trinamool Congress MP Abhishek Bandyopadhyay for his alleged involvement in signature forgery case of party MLAs. Today, Abhishek arrived at the CID headquarters Bhavani Bhavan in Kolkata. The CID is investigating the case following the Calcutta High Court order. It is alleged that Abhishek Bandyopadhyay forged signatures of the newly elected MLAs of Trinamool Congress after the Vidhan Sabha election in West Bengal for selection of Leader of Opposition in the Assembly. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has informed that Karnataka has received 5 times more central tax devolution as against the allocation during the UPA tenure. She was addressing the Vikasit Bharat Sankalp Samavesh in Bengaluru today. She refuted the allegations of Congress-led state government in Karnataka that Karnataka is deprived of central allocations. The government has appointed noted economist Professor Alok N. Sharma as the chairman of a high-level technical expert committee on labour statistics. The committee has been constituted to strengthen and periodically review labour market indicators and assess the evolving structure of India's labour market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. More from our correspondent.
2: In a spectacular celebration of shared culture and unity, more than 5,000 Bharatanatyam dancers came together at Colombo's Goldface Green today, creating history with the world's largest Bharatanatyam dance lesson. The Guinness World Record citation was presented following the performance, with Indian High Commissioner Santosh Jha receiving the certificate on behalf of the performers and organizers. The breathtaking performance transformed the iconic seaside venue into a vibrant showcase of tradition, discipline and cultural excellence. The event turned out to be a landmark moment for classical dance and a proud tribute to the enduring cultural bonds between India and Sri Lanka. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
0: In Odisha, the 3-day Raja festival began today with a celebration of Pahili Raja, ushering in the onset of the monsoon and the Odia month of Ashada. The festival symbolizes reverence for Mother Earth and reflects the state's rich agrarian traditions. More in this report.
3: The Raja festival has begun across Odisha from today with the observance of Pahili Raja, one of the state's most cherished cultural celebrations. Raja honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Poda Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
0: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
5: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
6: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को UPA सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

शुदा नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैक मेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज। लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को पसंद किया बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुरत और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ले।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है, क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

महाराज दुर्मुख दुर्जय दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंद

महारानी गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: समझे, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप, कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव, दुर्योधन नहीं मारा जा सकता, मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात।

0: में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
1: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
0: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
0: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
0: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
1: गया। आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूं।
1: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहां? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
1: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आतनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
1: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
1: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूं। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
1: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
1: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है, तुम्हारा समस्त वंश भी

आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार चलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस

0: तुम्हें मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था, इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने।
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंकु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, और इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हम अपराधी भी नहीं, हम है महाराज, हम है।
0: कांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने, किंतु महाराज अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे क्या हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए, अब मन कैसा तृप्त है। इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकी रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली, आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का, समय हमारा बोझ उतार कर।

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता। तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा,
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना। ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो बड़ी
0: भी अपनी दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा
0: जी।

0: जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं
0: हाँ
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: तो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन
0: क्या
1: हो।
0: बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: जी।
1: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे,
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार पसंद है। तो
0: तुम्हें?
1: ये भी कितना सुंदर सुंदर से
0: बहुत
1: गीत है
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत
1: रोमांटिक
0: है।
1: गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था
1: जी।
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे, दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा?
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर,
0: मंदिर है।
1: है
0: जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है, अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी

0: कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया।
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना,
0: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली।
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती है नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था? कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना? हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी, जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई।
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं, वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
0: सुख

0: मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
0: ड्राइंग
1: करते।
0: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
0: है,
1: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
0: जी।
1: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
1: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
0: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने?
1: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
0: अच्छा जी।
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ

0: तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी,
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: जी, बहुत बड़ी बात। आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
0: नहीं,
1: अपनी कला को एक कला कृति रहने दिया है।
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: वो
1: जी
0: वैसे ही रहता है वहां पर।
1: जी
0: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे
1: जी
0: हैं और
1: जी
0: आसमान की बात कर
1: बात
0: रहे
1: कर
0: हैं।
1: रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको दो दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप दो दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, अभी मेरे पास दो हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपना पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
0: बहुत सुंदर।

0: जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है, लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं, और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितनी कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं, और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है, ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, सो ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, मानती भी है, और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की, उजाले।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा देते हैं।

अब से कुछ ही पलों में 5:05 पर आप आनंद ले सकते हैं गाने नए पुरानों का। शाम 5:30 पर हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। दोस्तों, आज का जो युववाणी का कार्यक्रम है उसमें हम आपको सुनवाएंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की। शाम 6:00 हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 6 अध्याय से श्लोक 7-10 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा।

और दोस्तों शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का एजबेस्टन बर्मिंगम से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 9:15 से एक बार फिर आप भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का एजबेस्टन बर्मिंगम से आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मैच जारी रहेगा।

दोस्तों एक बार फिर आपको बताते चलें कि आज युववाणी में आप हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गाने नए पुराने।

कभी हाँ कभी ना, ये था उस फिल्म का नाम जिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाज़ दी थी कुमार सानू ने। दोस्तों, कभी हाँ कभी ना फिल्म 1994 में रिलीज़ हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था शाहरुख खान और सुचित्रा कृष्णमूर्ति पर। और ये जो फिल्म है कभी हाँ कभी ना, ये कुंदन शाह साहब ने डायरेक्ट की थी, जिन्होंने दूरदर्शन पर जो बड़ा ही चर्चित सीरियल रहा नुक्कड़, उसको भी डायरेक्ट किया था।

दोस्तों, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में किंग अंकल फिल्म का यह गीत आपने सुना। इंदिवर ने इस बेहद ही खूबसूरत गीत को लिखा था और संगीतकार थे राजेश रोशन। साथियों, किंग अंकल फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे स्क्रीन पर फिल्माया गया था शाहरुख खान और एक्ट्रेस नगमा पर।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में स्वयंवर फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और संगीतकार थे राजेश रोशन। साथियों, स्वयंवर फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी और ये गीत जो आपने अभी सुना स्क्रीन पर फिल्माया गया था शशि कपूर और मौसमी चटर्जी पर।

दोस्तों, दिल है के मानता नहीं फिल्म का ये गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीतकार थे नदीम श्रवण। लीजिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

दोस्तों, मिस्टर आशिक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने और इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त विपिन सहगल को आज का गाने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गाने नए पुराने FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बस होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। साथियों आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दोस्तों आज 14 जून है और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। साथियों इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। निशुल्क रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षण योगदान के लिए धन्यवाद देना है। साथियों यदि इस दिन की बात की जाए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई थी और मई 2005 में इसे स्वास्थ्य अभियान के रूप में घोषित कर दिया गया। अब इस दिन को ही क्यों चुना गया दोस्तों? 14 जून जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। दोस्तों इस दिन का जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और कैंसर के इलाज के दौरान ज़रूरतमंद मरीजों की सुरक्षा रक्त और प्लाज्मा उपलब्ध कराना है। सुरक्षित रक्तदान के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे WHO के 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में शामिल किया गया है। तो आपको भी रक्तदान दोस्तों करना चाहिए क्योंकि आपका जो रक्तदान है वो किसी की जान बचा सकता है। और हमें ये संदेश सभी लोगों को देना चाहिए कि रक्तदान से हमारे स्वास्थ्य पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है और जो रक्त हम डोनेट करते हैं वो किसी की जान तो बचा ही सकता है लेकिन जो हमारा ओरिजिनल जो ब्लड है वो रीस्टोर भी हो जाता है यानी कि प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो दिन है बड़ा ही एक पवित्र दिन है जिसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि रक्त की कमी के कारण कोई भी मरीज, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से अपने जीवन से वंचित ना हो जाए। तो दोस्तों ये तो था विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में जानकारी। अब हम आपको सुनवाने वाले हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की लेकिन इस कार्यक्रम से पहले सुनिए ये संदेश।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दी, ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका?
5: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: I know na.
7: RBI कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
9: मिस सीमा
10: जी,
9: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
10: क्यों? लेकिन मैं
9: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
10: डिजिटल अरेस्ट?
9: 1 लाख दो, बच जाओगे।
10: इतने पैसे?
9: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
10: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
11: हेलो मम्मा।
12: RBI कहता है,
13: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
14: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। साथियों, कार्यक्रम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के आज के संक में विश्व नेत्रदान दिवस, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की विभिन्न कोर्सों के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जानकारी, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा कराया जा रहा है प्रोटोकॉल योग और विभिन्न प्रतियोगिताएं, विश्व रक्तदाता दिवस। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र में। पर साथियों, आपको जानकारी दें कि दिनांक 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। साथियों, विश्व नेत्रदान दिवस के बारे में हमें विस्तारपूर्वक जानकारी दे रही हैं।
15: मैं डॉक्टर अनीता गोयल, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में पोस्टेड हूँ।
16: मैम, आज दिनांक 10 जून को हम विश्व नेत्रदान दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
15: हाँ जी, आज 10 जून को हम विश्व नेत्रदान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉर्निया हमारा आगे का ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंख की, इस बीमारी में हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना होता है, उसके लिए नेत्रदान की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं, जगह जगह पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय पर जागरूक हों और अपना नेत्रदान देने के लिए प्लेज करें।
16: मैम, आज जैसे हम विश्व नेत्रदान दिवस मना रहे हैं तो नेत्रदान का क्या महत्व रहता है, वो हमें थोड़ा सा बताइए विस्तार से।
15: जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी आंख की ट्रांसपेरेंट लेयर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, कॉर्निया जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत तरह से की बीमारियां हैं, चोट लगने से या बचपन से कई लोगों का कॉर्निया खराब होता है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, आंख को बदल देना। तो उसके लिए हमें किसी मृत व्यक्ति की कॉर्निया लगानी होती है, तो इसको ही हम नेत्रदान कहते हैं। और ये बीमारी इतनी ज्यादा विश्व व्यापक है, देखिए कि हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व नेत्रदान दिवस, तो मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम जो ग्लोबल है, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम आज विश्व नेत्रदान दिवस पर अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं।
16: नॉर्मली हमने देखा कई बार जो एक्सीडेंट होता है तो पहली प्राथमिकता लोग ये कहते हैं कि चलो अभी तो जैसे संस्कार के लिए सीधे चले जाते हैं, लेकिन वहां पे नेत्रदान भी हो सकता है, तो वो जैसे किसी कोई एक्सीडेंट करने के बाद कितनी देर के बाद आदमी इस नेत्रदान कर सकता है अपने?
15: देखिए, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, 4 से 6 घंटों के अंदर हमें नेत्रदान नेत्र कलेक्ट करना होता है कॉर्निया, और सर्दियों में 10 से 12 घंटे तक हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, अगर जैसे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, जैसे अगर एसी चल रहा है ना, आपने आई बॉल्स को कवर कर दिया है पानी की रुई, जैसे पानी में रुई गीली करके या कपड़ा गीला करके अगर आपने कॉर्निया पे आंखों पे रख दिया है, तो उन कंडीशंस में हम 8 घंटे तक भी कॉर्निया ले सकते हैं।
16: मैम वैसे तो पहले से जागरूकता है, लेकिन आज भी लोगों में बहुत सारे भ्रम है नेत्रदान को लेके, वो नेत्रदान करना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ी जागरूकता भी आई है, तो आमजन के लिए किस तरह से कार्य है जो सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र वो करता है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके नेत्रदान के प्रति?
15: जैसे बहुत ही सिंपल है, इसका तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। 112 नंबर पे आपने कॉल करना है, जो एम्बुलेंस सर्विसेज का हमारा नंबर होता है 112, सभी को पता है ये नंबर। 112 पे आप नंबर पे डायल कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे घर में या हमारे आसपास एक डेथ हुई है, तो हमारी टीम हॉस्पिटल से खुद आती है, खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपके एड्रेस पे आएगी और कॉर्निया प्रॉपर एक मीडियम में लेकर के प्रॉपर जगह पे पहुंचाना, ये सारा काम हमारे टीम के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कोई ऐसी भ्रांति नहीं है कि भाई ये ले तो जाएंगे और उसके बाद इसको वेस्ट कर देंगे या डिस्कार्ड कर देंगे
16: जी।
15: है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हम बिल्कुल प्रॉपर मीडियम में लेके जाते हैं उसको, तुरंत ही हम सही जगह पे, जैसे हमारा टाई अप है हम मेडिकल कॉलेज रोहतक में भेजते हैं
16: जी।
15: तो इस तरह से ये पूरी चेन है जिसकी हमें जवाबदेही है, तो इट्स वेरी सिंपल और इसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं है।
16: नॉर्मली वे में अगर हम मैम बात करें, कोई भी आदमी अपने नेत्रदान करना चाहता है तो फिर वो कहाँ पे संपर्क कर सकता है और क्या उसका प्रोसेस होता है?
15: वो देखिए, हाँ जी बिल्कुल, दो चीजें हैं हमें जो समझनी है। एक तो है हम प्लेज करते हैं, जैसे मैं या आप, हम प्लेज कर लेते हैं कि हमने अपने नेत्रदान करने हैं, है ना। और एक है लेकिन हम जीवित हैं, हम अभी तो कॉर्निया दे नहीं सकते, है ना, तो कलेक्शन के लिए तो हमारी मृत्यु तक का इंतजार करना पड़ेगा
16: जी।
15: तो हमारा रोल जो है वो ये है कि हमारे आसपास या हमारे घर परिवार में अगर कभी भी कोई भी डेथ होती है तो हम उनको मोटिवेट करें, रिश्तेदारों को मोटिवेट करें और उनकी आई डोनेशन करवाएं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लेज करना एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन और अवेयरनेस फैलाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं।
16: मैं क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा, आज हम विश्व नेत्रदान दिवस मना रहे हैं?
15: हाँ जी बिल्कुल, मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप प्लेज जरूर करें कि हाँ हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी नेत्र दान करना चाहेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को ये बताएं कि मैंने अपना ऐसा प्लेज किया है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें डोनेट की जाएं, और साथ ही साथ हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, मोटिवेट करें लोगों को भी, जहां पे भी कोई मृत व्यक्ति हो, कोई आपके घर में बुजुर्गों की डेथ हो जाए, तो आप आगे आके उनकी नेत्रदान के लिए उनको मोटिवेट करें। आज के दिन में यही कहना।

0: स्टडी में अंडर ग्रेजुएशन के बहुत से कोर्स आप करना चाहते हैं तो 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा अगर आप आईटीआई उमरी में आईटीआई के बहुत से कोर्स करना चाहते हैं, इसमें मुख्यतः हमारे कोर्स हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और बहुत से कोर्स, तो आईटीआई उमरी के लिए भी आप 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, फिर से आपको बताएं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अगर बहुत से कोर्सों के बारे में आप आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स हों, तो 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अधिक जानकारी के लिए देखिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kuk.ac.in पे आप तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। और साथियों, आपको जानकारी देंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा बहुत से प्रोटोकॉल योग करवाए जा रहे हैं। और साथियों, इसके अलावा ही बहुत सी योग प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा। साथियों, तमाम जानकारियां हमें दे रही हैं।
1: मैं डॉक्टर मंजू शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर कुरुक्षेत्र।
2: मैम, इस समय पूरे कुरुक्षेत्र जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बहुत से प्रोटोकॉल योग और कार्य करवाए जा रहे हैं जिला कुरुक्षेत्र में, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: हाँ जी सर, ये हमारी 18 मई से शुरुआत हो गई थी प्रोग्राम की। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो 21 जून को मनाया जाएगा। तो 18 मई से हमारी शुरुआत हो गई थी प्रोग्राम की, तो हमने पहले स्कूल में कराया। अब हमारा 8 जून से 10 जून के बीच में हमने हर गांव में, सारे जितने भी जिले के गांव हैं, वहां पे योग जागरण यात्रा निकाली है और जितनी व्यायामशालाएं हैं उनमें हमारे योग जो सहायक है उनके द्वारा योग कराया गया है। और इसके अलावा 11 जून से 13 जून हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चला है, जिसमें सभी ब्लॉक लेवल में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, अन्य विभाग के अधिकारी हैं, पंच, सरपंच, एनसीसी कैडेट, बाकी जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, उनको सारे के हमारे जितने ब्लॉक हैं उन पे प्रशिक्षण दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने 13 जगह पे इनको प्रशिक्षण दिया है
2: जी।
1: और इसके अलावा हमने 2 जून को हमारी ब्लॉक लेवल पे हुई थी योगासन प्रतियोगिता, जो हमने योगासन संघ और स्पोर्ट्स के साथ और आयुष विभाग ने तीनों ने मिलकर इसका करा है। और 9 तारीख को ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की हुई है टैगोर स्कूल में। हाँ जी, और अब इसमें जो खिलाड़ी जीतेंगे उनका पानीपत में 15 जून को स्टेट लेवल का योगासन प्रतियोगिता हो।
2: मैम, ये तो आपने जानकारी दी कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग करवाया, बहुत से विभाग भी शामिल हुए हैं, बहुत सी प्रतियोगिता भी करवाई गई, लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया, विभागों में कराया, तो किस तरह का रुझान आमजन का रहा योग के प्रति?
1: सभी लोग बहुत उत्साह से इसमें लगे हुए हैं, सबको अच्छा लग रहा है। और बाकी जो भी संस्था हमें कह रही है, जैसे वृद्धाश्रम है, जहाँ पे भी लोग चाहते हैं, लोग अपने आप ही हमें कह रहे हैं कि हाँ हमें प्रशिक्षण दीजिए, कि हमारे पास NIED से अब आया है कि हमें भी प्रशिक्षण कराइए, हालांकि हम वहाँ करा चुके हैं। तो सब लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और जो हमारे जिले के DC सर हैं वो भी बहुत ज्यादा इसमें उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये 21 जून तक ना सिमट के रहे, सभी पार्टिसिपेट करें, तो लोग भी इसमें बड़े उत्साह से, चाहे वो गाँव के हैं चाहे शहर के हैं, सब लोग बड़े अच्छे से अपने मन से हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर।
2: में क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा ताकि जो भी हम इस समय प्रोटोकॉल योग करवा रहे हैं, बहुत सी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, वो पूरी तरह से सफल रहें?
1: हाँ, मेरी सभी जिले वासियों से, सभी से यही अनुरोध है, इसको आप ये नहीं कि 21 जून तक करें, आप हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए करें, लेकिन योग को जरूर अपनाएं, यही मेरा सभी से निवेदन है।
2: तो डॉक्टर मंजू शर्मा जी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: और साथियों, आपको जानकारी देंगे विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। साथियों, दिनांक 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और साथियों, आज कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम कुरुक्षेत्र के ऐसे रक्तदाताओं से बातचीत कर रहे हैं जो ना केवल रक्तदान करते हैं बल्कि रक्तदान के लिए बहुत से कैंप भी लगाते हैं। तो आइए दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस पर ये है हमारी विशेष प्रस्तुति।
3: मैं रामेश्वर सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सर्व समाज कल्याण सेवा समिति कुरुक्षेत्र।
2: रामेश्वर सैनी जी, आज दिनांक 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं और आप एक हमारे ऐसे रक्तदाता हैं, ना सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि रक्तदान के लिए बहुत से शिविर भी लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप?
3: सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को अमरीक सिंह जी मेरी तरफ से राम राम। और विश्व रक्तदाता दिवस मैं सब अपने रक्तदाताओं को बधाई देता हूँ। मैं खुद भी 45 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 500 से ज्यादा मैं कैंप कर चुका हूँ
2: जी।
3: और मैं सभी रक्तदाताओं से मैं यही अनुरोध करूंगा कि किसी की जान खून की कमी में ना जाएं। आजकल मैंने कई बार देखा है सड़कों पे लोग स्टंट

0: करते हैं, मोटरसाइकिलों पे स्टंट करते हैं, तो वो सड़कों पे वहां स्टंट ना करके वहां कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी वजह से किसी दूसरे की जान जा सकती है। हमने जान लेने वाला नहीं बनना, हमने जान देने वाला बनना है। और एक रक्तदाता तीन लोगों की जान बचाता है अमरीक जी। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो सड़कों पे स्टंट ना करे, हेलमेट पहन के चले, अपने जो रक्त है उसको किसी रक्त शिविर में जाके, रक्तदान शिविर में जाके, या किसी ब्लड बैंक हमारा LNJP में है और बहुत अपने कुछ क्षेत्र में ब्लड बैंक है, उनमें जाके अपना रक्तदान करें ताकि वो लोगों के काम आए, ना कि सड़कों पे भाई लड़ाई झगड़ों में भाई।
1: अच्छा रमेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहली बार आपने जब शुरुआत की रक्तदान करने की, वो हमें बताइए, वो अनुभव कैसा था?
0: सर पहली बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी सिस्टर, मेरी बुआ की लड़की बीमार थी, उसको 6 यूनिट ब्लड की लगी। ब्लड जब मैं लेने गया वहां ब्लड बैंक में, उससे पहले मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था। जब मैं ब्लड लेने गया, उन्होंने 1 यूनिट तो दे दी, मेरी जानकारी लगा लो या मेरा भाईचारा लगा लो वहां पे, उन्होंने मुझे 1 दे दी 2 दे दी 3 तक उन्होंने मुझे दे दी। उन्होंने मेरे से बदले में कोई ब्लड नहीं मांगा। जब मैं 4th यूनिट लेने गया तो वहां ब्लड बैंक के जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा भाई ब्लड डोनेट कर। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब मैं ब्लड डोनेट करने तो मैं तो इंजेक्शन नहीं लगवाता, मुझे तो इतनी मोटी सुई से डर लग रहा देखते हुए। बोले भाई फिर ये भी तो कोई डोनेट करके गया, ये भी तो किसी का रक्त है, ये भी तो किसी ने दिया होगा, ये भी किसी का खून है, अगर आप नहीं दोगे तो फिर हम कहां से ब्लड बैंक चलाएंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब मेरी सिस्टर की जान बचा लो, अभी जितना लगता है उतना दे दो
1: जी,
0: मैं आपसे वादा करता हूँ मैं रक्तदान भी करूंगा और कैंप लगाऊंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे ब्लड जो 6 यूनिट लगी, उन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल से ब्लड उपलब्ध कराया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था वहां पे, जो जैसे कि अपने सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हो तो वहाँ ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, थोड़ा अगर जब बाहर आप प्राइवेट के लिए लेके जाते हो उसमें आपके थोड़े बहुत टेस्टों की फीस देनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट की फीस है वो देनी पड़ती है। तो मैंने जब 6 यूनिट जब मेरी सिस्टर ठीक होगी तो मैंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, और उस दिन इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए, मैं और मेरा बेटा 10-11 साल का था
1: जी,
0: हम दोनों बापू बेटा जाके केले लेके आए, पूरी बारिश हो रही, खूब बारिश, केले लेके आए जी, केले लेके हमने दूध गर्म करवाया और हमने जाके अपना वहां पे ब्लड बैंक में रख दिया। अब वहां एक मेरे दोस्त थे ज्ञान शर्मा जी ब्लड बैंक में, जो उसके देख रेख थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज डोनर आ जाएंगे इतनी बारिश में। अमरीक सिंह जी इतनी बारिश उस दिन, बहुत ज्यादा बारिश, तो डोनर एक भी नहीं आया सर। 11 बजे तक वेट करके मैंने कहा भाई मेरा ले लो, ज्ञान जी से रिक्वेस्ट की वहां सर एक डोनर आप दे दो, 2 डोनर हो जाएंगे हम, कम से कम हम खुश होके चले जाएंगे कि हमने 2 लोगों ने डोनेट किया है और मेरा जो अंदर का डर है वो निकल जाएगा, मैं किसी को डोनेट करते हुए देख लूंगा
1: जी।
0: तब वहां पे एक LT थे मनीष जी हैं, तो उन्होंने ब्लड डोनेट किया और मैंने अपना फार्म भर लिया। जैसे ही मैंने अपने फार्म भर के तैयारी की, इतना जो मेरे यार दोस्त थे वहां पे वो सारे इकट्ठा होने शुरू हो गए, वहां पे लाइन लग गई सर
1: जी।
0: और आप मानोगे नहीं, उस दिन 150 लोग आए ब्लड डोनेट के लिए, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में बैग थोड़े कम थे, वहां 78 यूनिट के बाद उन्होंने 78 यूनिट कुछ ऐसा लिया, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े भाई नेक्स्ट कैंप आप 2-4 दिन बाद रख लो। तो मैंने फिर नेक्स्ट कैंप संडे को किया, तो उस दिन रक्त की कोई कमी नहीं सर, इतने लोग आए और मैंने खुद भी रक्तदान किया। और मैंने जब रक्तदान करके मुझे एक बार हल्का सा महसूस हुआ यार, ओए दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि जो शरीर में हल्का महसूस हुआ और एक जो आंतरिक ऊर्जा थी वो मिली, और एक जो एक नया जैसे ये लगता है कि शरीर में कुछ नया अनुभव हो रहा है। कई दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यार किसी एक ऐसी चीज से मिला जो परमात्मा से, कोई सीधा परमात्मा से ही मिल गया जैसे कि, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ।
1: तो ये तो आपका पहला अनुभव था। रमेश्वर जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में बहुत सारे आप कैंप लगाते हैं और बहुत सारी युवा शक्ति आपके पास आती है जो,
0: मैं सर एक तो कुरुक्षेत्र में लगाता
1: जी,
0: आपका हिसार, जींद, नरवाला, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, और कोशिश करता हूँ कि PGI में भी डोनर जाए, और जिसको मतलब लाइव डोनर की जरूरत है लाइव भी भेजता हूँ, जो भी संभव हो पाता उसको करता हूँ। और अभी हमारा आदर्श हॉस्पिटल है, आपका ट्रामा सेंटर है, वहां पे हमारा टाई अप हुआ है, उन्होंने कहा आप हमें डोनर दीजिए, हम आपको बस भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने बस भी मुझे देने के लिए कहा। और इतने युवा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा, आप मैं तो ये मानता हूँ कि शायद मतलब एक जो आंकड़ा मेरे दिमाग में अभी 2000 के करीबन डोनर मेरे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अभी मेरे पास डिमांड आ रही है बार बार कैथल से कि आप कैंप करें और आए और हमारे साथ कैंप करें।
1: जो हमारी युवा शक्ति किस तरह से आप उनको प्रेरित करते हैं, पहली बार ब्लड देने आते हैं, हमने सुना है बहुत ज्यादा कहीं डरते भी हैं, घबराते भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए।
0: सर बड़ा टेढ़ा काम है। जब शुरू में कोई डोनर मैंने मुझे याद है इसमें जब भी गीता जयंती होती थी मैंने 3-4 कैंप लगातार गीता जयंती में लगाए, तो उसमें गीता जयंती में जितने दिन गीता जयंती चलती थी उतने दिन हमारे कैंप रहते थे। उसमें जैसे HIV का भी कराते थे हम और ये ब्लड डोनेट का भी, सुबह ब्लड डोनेट चलता था, उसके बाद हम HIV का प्रोग्राम चलाते थे, HIV का जागरूकता शिविर और उसमें जांच। जब वहां पे नए नए युवा आते थे ना वो मस्ती में आते थे
1: जी,
0: और खून ना दे दिए, मर जूंगा, कमजोर हो जूंगा या कोई समस्या हो जाएगी, हम घर पता लगे घर वाले, हाँ हमारे घरों में भी समस्या है कि किसी को बता दे खून दान कर दिया, यार ये क्या कराया तू, तेरे में इतना कितना खून है
1: जी।
0: तो मैंने उनको बिठाया और उनको समझाया, वहां देखो ब्लड डोनेट करने से आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, आपका खून गाढ़ा ना होने से आपको ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कैंसर का खतरा कम होगा, आपके नए सेल बनेंगे, चेहरे पे रौनक आएगी, शरीर में चुस्ती आएगी, नया बोन मैरो बनेगा जिससे रेड सेल और व्हाइट सेल जो भी आपकी बॉडी है वो नए प्रोड्यूस करेगी, जिससे आपको एक अलग एनर्जी आपको मिलेगी। तो जब उन्होंने मेरे को ये मेरे से भी पूछा, फिर वहां जो डॉक्टर की टीम थी बोले ये सर जो बता रहे हैं वो झूठ तो नहीं बोल रहे, सच है
1: जी।
0: तो वो डॉक्टर की टीम भी यही कहती थी आपका इससे कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, 24 घंटे में आपका रक्त वॉल्यूम पूरा हो जाएगा और आपका 20 दिन के अंदर वापिस 28 दिन के अंदर आपके सारे जो भी आपका मिनरल्स अंदर से निकले हैं, जो भी आपके बॉडी से पार्ट वो सब आपका पूरा हो जाएगा और आप दोबारा से रीज। तो वो बड़े मतलब मोटिवेट होने के बाद ना फिर वो दूसरे साथियों को भी एक मोटिवेट हो गया ना, मतलब जैसे ग्रुप पकड़ा उसको 5-4 लोगों को इकट्ठा किया
1: जी।
0: एक मोटिवेट होने के बाद वो सारे फिर ब्लड डोनेट करके जाते थे। एक चीज और ये भी उनसे पूछा जाता था कि आपके परिवार में कभी ब्लड की किसी को जरूरत पड़ी है
1: जी,
0: तो जिसको ब्लड की जरूरत पड़ी वो तो कहते कहता हाँ बिल्कुल सर मुझे जरूरत पड़ी है। महा भाई देख बिना पानी के जैसे मछली तड़फती है ना ऐसे तड़फते है ना, बीमार मरीज अंदर पड़े और उसको खून नहीं मिल रहा तो उसकी जान को कितना खतरा। बोले हाँ जी मैं भुगतभोगी, कई लोग ऐसे भी थे जो भुगतभोगी थे कि हम अपनी जो खून है वो लड़ाई झगड़ों में सड़क पे स्टंट मारने में निभाएंगे, हम अपना खून जाके डोनेट करके जो 4 लोगों की हम जान बचा सकता है एक व्यक्ति वो जान बचाने का काम करेंगे।
1: शुरू चल रहे हैं हमारे रक्तदाता कई बार बिना खाना खाए आ जाते हैं, तो इस तरह की बातें भी उनसे पूछी जाती हैं।
2: जी जी हाँ जी सर, पूरा एक चेकलिस्ट होती है सर ब्लड डोनेशन से पहले, वो पूरी चेकलिस्ट पूछ के भी कुछ पूछा जाता है, कुछ एग्जामिनेशन किया जाता है, वो पूरी भरी जाती है। अगर उसमें डॉक्टर जो एग्जामिनिंग डॉक्टर है अगर वो उसको ओके करते हैं कि हाँ ये फिट है फिट टू डोनेट द ब्लड सब उससे लेते हैं।
1: जैसे डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई रक्तदाता रक्तदान कर देता है उसके बाद हमें किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है?
2: डाइट ठीक ले
1: जी।
2: और हाँ जी हाँ डाइट ले, थोड़ा सा बस एक दिन तक थोड़ा सा, उस दिन थोड़ा सा कोई हैवी काम ना करे है, या जिसको किसी को एनीमिया है रक्त की कमी है तो उसको देते हैं। तो मैं मेरा सबसे यही प्रार्थना रहेगी निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद आप दे सकते हैं, देते रहेंगे तो अगर आप देंगे तो हम जो है आगे जो है किसी को दूसरे जो है जिनको जरूरत है उनको दे सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं और एक रक्तदाता बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। मैं खुद भी डोनेट करता हूँ फ्रीक्वेंटली।
1: डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
3: आज का दिन उन लोगों को समर्पित है जो अपना रक्त किसी ऐसे लोग के लिए दान करते हैं जिन्हें वो कभी जानते नहीं है। रक्तदाता एक ऐसा वह प्राणी होता है जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से बिना किसी के बुलाए पर चुपचाप जाकर के दूसरे का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करता है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता।
1: बहुत सालों से आप रक्तदान कर रहे हैं, ना सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि बहुत सारे कैंप भी लगाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं अब तक 183 बार रक्तदान कर चुका हूं। इसके साथ 89 टाइम प्लेटलेट और एक बार प्लाज्मा दान कर चुका हूँ। और जहाँ तक बात है रक्तदान शिविर की, रक्तदान शिविर में हमने अब तक 591 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए, जो आज 591 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कुरुक्षेत्र की जिला कारागार में लगाया गया है
1: जी।
3: और इन 591 रक्तदान शिविरों के अंतर्गत हमने 22,000 से अधिक रक्त की इकाई सरकारी रक्त कोषों को दी है
1: जी।
3: इसके अतिरिक्त जब कभी मांग आती है तो मांग आने पर हम जो रक्तदान कराते हैं करते हैं उसका कोई हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं रखा है, क्योंकि ना ही इसकी रखने की हमें आवश्यकता है
1: जी।
3: और इसके साथ ही आज एक हम सम्मान समारोह भी यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें हरियाणा के 43 लोगों को रक्तदाताओं को स्टार रक्तदाता की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है।
1: तो अशोक कुमार वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज विश्व जो रक्तदाता दिवस हम मना रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश हमारे आमजन को रहेगा ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा जो रक्तदान है वो करें?
3: मेरा ये संदेश यही है कि रक्तदान महादान है, रक्तदान पुण्य का काम है, रक्तदान दूसरे के जीवन बचाने के लिए नहीं अपितु हम स्वयं भी रक्तदान के पश्चात स्वस्थ होते हैं। और ये भी कहना चाहूंगा कि रक्तदान के बदले में यदि हम कोई उपहार ले रहे हैं या कोई पैसा ले रहे हैं तो हम रक्तदान करने के पश्चात भी एक अच्छा काम ना करके समाज में एक विकृति का फैलाने काम करते हैं। तो रक्तदान के लिए यदि प्रशंसा पत्र आपको दे रहा है तो उसको आप ग्रहण कीजिए, यदि कोई आपको स्मृति चिन्ह दे रहा है उसे ग्रहण कीजिए, लेकिन यदि रक्तदान के बदले में आपको रुपया दे रहा है तो वो एक पाप है, ऐसा पाप हमें नहीं कमाना चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए।
1: तो अशोक कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
3: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। साथियों, आज के अंक में वाचन संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथ ही उसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसी के साथ हमारा युवाणी का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Pala the Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
3: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating but who will innovate with India.
4: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
3: External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys Founder Narayana Murthy and several prominent business leaders were also present on the occasion. Following the inauguration, Prime Minister Modi and French President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event. INS Sharada has successfully concluded its visit to Colombo, Sri Lanka. The Ministry of Defence said the visit

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया और कांग्रेस द्वारा SIR पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की। रेवाड़ी में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन। श्री सतीश पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब, किसानों सहित हर वर्ग के लिए काम किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद में मातृशक्ति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी डॉ. अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर व हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल स्थित महर्षि दयानंद चौक पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके उपरांत श्री सुरेंद्र नागर ने पंजाबी धर्मशाला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों को सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है और बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद किया जा रहा है।
1: नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम है, हमारे बुद्धिजीवी सम्मेलन है, हमारी अगर आप बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारी जीरो बजट फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, योगा दिवस इसमें कार्यक्रम होगा, अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के अंतर्गत आज पलवल में यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान में मैंने भी आज यहाँ भाग लिया।
0: पत्रकारों से सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद चुनाव आयोग और EVM पर आरोप लगाना शुरू कर देती है।

0: लेकिन जिन राज्यों में जीत के बाद सरकार बना लेती है वहां चुनाव आयोग व ईवीएम की बात नहीं करती। कांग्रेस द्वारा एसआईआर पर प्रश्न उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। सम्मेलन में शामिल हुए होडल से विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि बुद्धिजीवी सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गांव फतेहपुर बिल्लोच के 148 पात्र लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा आवंटित 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री वितरित की। इस अवसर पर श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि भूखंड की रजिस्ट्री केवल कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि लाभार्थियों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। इससे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा वे अपने स्वयं के घर का सपना साकार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करोड़ों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी के एक स्कूल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रभारी एवं राजस्थान से नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए श्री पूनिया ने एसआईआर की सराहना की। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य वास्तविक मतदाता के साथ साथ भारतीय नागरिक की भी पहचान करना है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद से ही घुसपैठिए देश छोड़कर जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का ही परिणाम है कि कांग्रेस राज में देश में दो ही एम्स थे, लेकिन गत 12 वर्ष में 15 एम्स तैयार किए गए हैं। इनमें से रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में बनने वाला एम्स भी है। इस एम्स से न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, बुद्धिजीवी सम्मेलन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सहित अन्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कार्य किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। जींद में देवी शक्ति सेंटर इकाई द्वारा मातृ शक्ति के सहयोग से एक विशेष रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। मीडिया से बातचीत में नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने आयोजकों और रक्तदाताओं की जमकर सराहना की।
1: ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सभी आयोजककर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ऐसे शुरुआत करी। में कपल भी हैं और अनेक मेरी बहनें भी हैं जिन्होंने आज रक्तदान भी किया है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता सकती हूँ डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को खून की कितनी जरूरत पड़ती है, और आप अगर किसी को एक यूनिट रक्त अपना दान करते हैं तो वो किसी महिला की और उसके बच्चे की भी जान बचाने का कार्य करती है।
0: उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रक्तदान के पुनीत कार्य सहित हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा नागरिक अस्पताल हिसार के चिकित्सक दल के सहयोग से हिसार मिलिट्री स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में नागरिक अस्पताल के रक्त बैंक प्रभारी व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया।
2: यही प्रयास है हमारा, जितने से जितने नए रक्तदाता हम जोड़ सके, क्योंकि खून का अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दान से ही हम खून की पूर्ति को कर सकते हैं कि जो भी 18 साल से 65 साल के बीच में है और जिनका वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं, और जितने हमारे मेल भाई हैं वो हर 3 महीने के बाद दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो हर 4 महीने के बाद। जरूरत है सिर्फ हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए कि आप अपने जन्म दिवस पे कोई अपनी वर्षगांठ है उसमें जरूर इसको जोड़े रक्तदान से।
0: डॉक्टर सुशील गर्ग ने आमजन से नियमित रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्त देने के 5 बड़े फायदे हैं। एक तो रक्तदाता की मेडिकल जांच होती रहती है, काला पीलिया, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों की जांच हो जाती है। अम्बाला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपायुक्त एवं अध्यक्ष अजय सिंह तोमर एवं सचिव विजय लक्ष्मी के मार्गदर्शन में अम्बाला शहर के रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने किया। शिविर में स्टार रक्तदाता रजिंदर गर्ग ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर नीतू सचदेवा की अगुवाई में अम्बाला छावनी नागरिक अस्पताल की रक्त बैंक की टीम ने 26 यूनिट रक्त एकत्रित किया। सभी रक्तदाताओं को बैच प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद के सेक्टर 8 निवासी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा देश के पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हो गए हैं। वे अब तक 183 बार रक्तदान कर चुके हैं और 89 बार प्लेटलेट्स दान और 1 बार प्लाज्मा दान कर चुके हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि उनकी रक्तदान यात्रा वर्ष 1990 में एनसीसी कैडेट के रूप में शुरू हुई थी। पुत्र के जन्म के समय रक्त की आवश्यकता ने उन्हें इस महादान के महत्व का एहसास कराया, जिसके बाद उन्होंने जीवन भर रक्तदान करने का संकल्प लिया।
3: मैं 183 बार रक्तदान, 89 बार प्लेटलेट्स और 1 बार प्लाज्मा दान कर चुका हूं। मैं समस्त देशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस पर बधाई देता हूं और विशेष रूप से उन रक्तदाताओं को, उन शिविर आयोजकों को जो रक्तदान के माध्यम से अमूल्य जीवन बचाने का काम करते हैं। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। रक्तदान का कोई अन्य विकल्प नहीं है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को रक्तदान जैसा अमूल्य उपहार भेंट कर सकता है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी और अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 6 अध्याय से श्लोक 7 से 10 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 7 से आगे की व्याख्या। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। शीत गर्मी, सुख दुख तथा मान व अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हो गई है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले जीवात्मा के ज्ञान में सर्वत्र सर्वता परमात्मा समाहित है। श्रीमद्भगवद गीता का प्रमुख उपदेश कर्मोपदेश है। कर्म तो करना ही है, सन्यासी को भी कर्म तो करना ही है। कर्मों का त्याग से संबंध केवल उन्हीं कर्मों से है जिनसे मानव पतन की ओर अग्रेसित होता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का त्याग करना ही चाहिए। कर्तव्य कर्मों व नित्य कर्मों को तो सभी को करना चाहिए। इन्हीं कर्मों को करते हुए कर्मफल का त्याग करना चाहिए। कर्म के इस मार्ग में शीत उष्ण अर्थात सर्दी व गर्मी, सुख दुख व मान अपमान में शांत चित्त व स्थिर रहने वाले के ज्ञान में परमात्मा प्रतिष्ठित होते हैं। शीत उष्ण को सहन करना, इसको तितिक्षा कहा गया है। सुख दुख में अत्यधिक उत्साह न करना व नहीं शोक करना, इसे स्थिरधि के लक्षणों में माना गया है। दुखेषु अनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। शीत उष्ण में, सुख दुख में व मान अपमान में अंतकरण की वृत्तियों का शांत होना, यह सब अभ्यास से सिद्ध होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास व वैराग्य से ही यह संभव है। अभ्यास के अतिरिक्त सतत श्रवण मनन निदिध्यासन के विभिन्न स्तरों पर शास्त्रीय वचनों को जीवन में उतारना, योग वाशिष्ठ में कहा है स्थितधि की स्थिति दृष्टाभाव से उत्पन्न होती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है तथा विकार रहित है, सभी इंद्रियां जिसके द्वारा जीत ली गई है, जो कूटस्थ है अर्थात योग के उच्च शिखर पर विद्यमान है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, लोहा एवं सोना समान है, वह योगी युक्त है अर्थात परमात्मा के ज्ञान हेतु योग्य कहा गया है। 7वें श्लोक में जिसे योगारूढ़ कहा गया है, उसे ही यहाँ युक्त योगी कहा गया है। जिस स्थिति में इंद्रिय व मन की गति स्पर्श नहीं कर सकती, वह स्थिति योग युक्त कहलाती है। यहाँ केवल आत्मा की ही सत्ता रहती है। युक्त योगी हेतु पत्थर, मिट्टी, सोना, लोहा समान प्रतीत होते हैं अर्थात उनमें कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि भेद केवल इंद्रियों के स्तर तक ही प्रतीत होता है। यहाँ इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि इंद्रियां साधक के नियंत्रण में हो, कान से जिसे चाहे सुने, जिसे न चाहे उसे न सुने, चक्षु से जिसे चाहे देखे व न देखने योग्य को त्यागे, त्वचा से जिसे चाहे स्पर्श करे, जिसे न चाहे उसे स्पर्श न करे, इस प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों के विषयों के प्रति भी बुद्धि उसे वैसे ही त्याग व ग्रहण में समर्थ बनाए, उसे जितेन्द्रिय कहते हैं। सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इस श्लोक में योग युक्त की विशेषता बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुरद अर्थात निस्वार्थ हित चाहने वाला मित्र, निश्चल भाव से हित साधन के आदान प्रदान वाला शत्रु, अनिष्ट चाहने वाला उदासीन मध्यस्थ, किसी प्रकार का संबंध न रखने वालों के प्रति धर्मात्मा व पापियों के प्रति समान बुद्धि रखने वाला वह योग युक्त अतिश्रेष्ठ है। यहाँ योग की अवस्थाओं का अनुक्रम कहा गया है, योगारूढ़, कूटस्थ, युक्त योग, योग से संबंधित सभी अवस्थाएं आत्मसंयम से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए इस अध्याय को आत्मसंयम योगाध्याय कहा गया है। आत्मसंयम, समबुद्धि, कर्मफल का त्याग आदि स्थिति को प्राप्त करने से ही योगारूढ़ युक्त योग की स्थिति प्राप्त होती है। वर्तमान में जिस प्रकार के द्वंद्व अर्थात क्या करें क्या न करें की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस दशा में गीता के दर्शन को जीवन में उतारना अत्यावश्यक हो गया है। गीता को जीवन में उतारने का सरलतम उपाय है श्रीमद् भगवद गीता को नियमित पाठ विधि से अध्ययन में लाना। स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक सेनानी गीता को जेल में भी साथ रखते थे, गीता पाठ करके फांसी पर झूल गए। भगवद गीता के अनेक भाष्यकारों, व्याख्याकारों ने अपनी भूमिकाओं में, व्याख्याओं में गीता के नियमित पाठ पर जोर दिया है। गीता के नियमित पाठ से कुछ ही दिनों में गीता के सिद्धांत जीवन में उतरने लगते हैं व प्रस्फुटित होने लगते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। हे अर्जुन, जिसका मन इंद्रियों सहित जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और अपरिग्रही इंद्रियजन्य सुख की सामग्री का संग्रह न करने वाला योगी एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगावे। इस श्लोक से 14वें श्लोक तक ध्यान योग की प्रारंभिक क्रिया कही गई है। यहाँ एकांत शब्द के प्रयोग से केवल संन्यास आश्रम का ग्रहण नहीं है, अपितु आरुरुक्षु आदि शब्दों के प्रयोग से इसका संबंध अन्य आश्रमों से भी है ही, क्योंकि संन्यास आश्रम, वानप्रस्थाश्रम व ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध तो एकांत से है ही। इसलिए यहाँ एकाकी अथवा एकांत शब्द गृहस्थाश्रम से संबंधित भी प्रतीत होता है। गृहस्थाश्रम अत्यधिक प्रपंच युक्त है, इसलिए गृहस्थियों के लिए घर के किसी एकांत भाग अथवा घर के बाहर या निकट किसी वृक्ष के नीचे या देवालय में अथवा गोष्ठ में नदी तटादि को एकांत स्थान कहा जा सकता है। ऐसे एकांत स्थान में योगी स्वयं को परमात्मा के चिंतन में लगावे। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने श्री गीता जी के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 7 से 10 तक की व्याख्या सुनी।
0: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आपने गीता के 6 अध्याय से श्लोक 7 से 10 की व्याख्या सुनी। व्याख्याकार थे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बस होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का एजबेस्टन बर्मिंघम से आंखों देखा हाल।

0: T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू

0: क्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की

0: नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: Trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर

0: भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत, ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया, और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
7: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है, और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
6: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
7: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
6: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
8: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
6: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
8: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the South Pole.

0: from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप मैच का आंखों देखा हाल।

0: के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।